0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और जिंदगी से कोई शख्स चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी याद चली जाए ओहो हो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जलील अली साहब का शेर है आपकी नजर किया कि दिल आबाद कहां रह पाए उसकी याद भुला देने से, दिल आबाद कहां रह पाए उसकी याद भुला देने से, कमरा वीरा हो जाता है एक तस्वीर हटा देने से। आय हाय हाय हाय कितना सच है कि शख्स चला जाए बिल्कुल, लेकिन उसकी याद की एक दुनिया जो पलती रहती है आपके जहन में, एक दिन जब आप उसकी याद से भी उबर जाते हो वो अकेलापन कुछ अलग ही होता है। स्टे ट्यून्ड मिर्ची महफिल, ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. La viva la murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Advocate Atul se baat kara dijiye sir.
3: Bol raha mat kaun?
4: Atul ji. असल में मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ, मैं परेशान हुआ तो समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी। मैं
3: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
4: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ। मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था।
3: यही क्या काम है?
4: वकील साहब, मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है।
3: अच्छा,
4: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है।
3: मेरे चैंबर में आइए तो हम जरा बैठ के बात करते हैं आपसे।
4: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ, मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है हमेशा।
3: किस टाइप का धोखे देती है?
4: मैं वही बता रहा हूँ, देखिए, चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडरवियर तक हो, वही धोखे देती है। थकिया धोखे, इतना धोखे देती है यार। वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने।
3: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने?
4: दोस्त,
3: ये मजाक क्या कर रहे हैं?
4: मजाक की बात नहीं है, बकवास की बात नहीं है, बेवकूफ
3: बात।
5: सर बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं। अतुल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दे, आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में।
4: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया।
5: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
3: कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
9: I am not going to bed with you ever again.
8: But why? What did I do?
9: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
8: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
9: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
8: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
9: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब इस महफिल में वक्त है
0: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आधुनिक हिंदी कविता के एक बड़े ही प्रमुख कवि और कथाकार से। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ अग्रवाल जी की, जो कि बड़े सोशलिस्ट आइडियाज पे लिखा करते थे। साहित्य अकादमी के पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया और मेरी एक बड़ी ही पसंदीदा कविता है केदारनाथ जी की, जो उनकी विजुअल राइटिंग स्किल्स को दर्शाती है। केदारनाथ जी लिखते हैं कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। वाह जी वाह, दिल खुश कर देता यार, इमेजरी हो तो ऐसी। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: जॉन मिर्ची इट्स हॉट। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
4: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
3: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
4: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
10: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
11: It's 8:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और जिस तरीके का माहौल है दुनिया में हमारे देश में उसमें ना प्रेम की शायरी करते हुए भी थोड़ी सी शर्म आती है क्योंकि आप कब तक अपने दिल को अहमियत देते रहेंगे जब आपकी जो आसपास की दुनिया है उसको आपकी नजर चाहिए उसको आपका एफर्ट चाहिए। अख्तर शिरानी साहब का शेर देखें, कहते हैं कि गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना ये आरजू थी कि बस तेरी आरजू करते। आय हाय हाय हाय हाय क्या सटीक बात है। गमे जमाना ने मजबूर कर दिया वरना ये आरजू थी कि बस तेरी आरजू करते। अब तो बहुत सी आरजू है दिल में, है कि नहीं? आप कताशी है आपके साथ मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप। इट्स हॉट

0: आमिर जी इट्स हॉट
1: और कुछ गाने आपकी जहन में बैठ जाते हैं यार
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और हाँ जी अब वक्त है आज का ताशी अनप्लग्ड आपको सुनाने का और ये जो कलाम है ये एक सूफी कलाम है और सूफी लोग बड़े इंटरेस्टिंग मुझे लगते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सारे रिलीजन्स के बीच में एक जगह है जहाँ पे वो रहते हैं वो सबके दरमियाँ हैं लेकिन वो किसी के भी पूरे नहीं हैं आई रियली लाइक द सूफी फिलोसफी बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लव बहरहाल पेशे खिदमत है सिर्फ आपके लिए

वाह जी वाह, दिल खुद ही शांत हो जाता है, दिल खुद ही एक जगह पे ऐसी चला जाता है जो कि बहुत ही सफेद, बहुत ही प्योर है। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहें अपने ताशी के साथ। और अगर ऐसी गजलें नगमे और सुनना चाहें तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHI TASHI पर। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
3: लिस्नर मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
4: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
3: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ, और मेरी ना हमेशा सबसे जो कोर मेमोरी है वो क्या होता था कि घर वाले पूजा कर रहे होते थे दिवाली के वक्त, मुझे जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि ये लो मोमबत्ती और पूरे घर में जाके लगाओ। अब पता नहीं कैसे पर दिवाली की जो रात होती थी, शाम होती थी, उसमें हवाएं तेज चलने लग जाती थी बड़े रैंडमली, है ना, और मोमबत्ती की जो लौ थी वो ऐसे ऐसे झूलती थी। उसी पे एक बड़ा सटीक शेर है और नुशूर वाहिदी साहब का शेर है, और ये सिखाता है कि जीवन में कैसे कुछ भी पक्का नहीं है। हस्ती का नजारा क्या कहिए, मरता है कोई जीता है कोई। हस्ती का नजारा क्या कहिए, मरता है कोई जीता है कोई। जैसे कि दिवाली हो कि दिया जलता जाए बुझता जाए। आय हाय हाय हाय हाय, मतलब एकदम मेरे सामने आ गई वो इमेज यार, वो जो लॉ लड़ रही होती है ना जब हवा से कि नहीं मुझे जिंदा रहना है, मैं होंगी बड़ी, और हस्ती का नजारा क्या कहिए, मरता है कोई जीता है कोई। जैसे कि दिवाली हो कि दिया जलता जाए बुझता जाए। और इंटरेस्टिंग एक पहलू ये भी है कि दिया जितना जलता है उतना बुझने के करीब आता है, क्योंकि तेल खत्म होता जाता है, है ना। तो जिंदगी का खेल यही है दोस्त, जितना वक्त मिला है मजे में बिता लो। स्टेडियम टू मिर्ची, आपका दाशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आपका ताशी नजर करे आज का किस्सा जो आ रहा है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर की जानिब से। लिखते हैं कि 1975 के एक ऑल इंडिया मुशायरे में एक नौजवान शायरा ने अपने हुस्न और तरन्नुम के तुफैल शिरकत का मौका हासिल कर लिया था। जब मौसुफा ने गजल पढ़ी तो सारे सुनने वाले झूम उठे। गजल भी अच्छी थी लेकिन अनजाने में उस शायरा ने प्रोनंसिएशन की कई गलतियां कर दी तो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर ताड़ गए कि गजल किसी और की है। गजल सुनाने के बाद जब मौसुफा अपनी नशिस्त पर वापस आकर जलवागर हुई तो एक मद्दा शायर ने उनसे कहा, मोहतरमा आपके कलाम ने वाकई मुशायरा लूट लिया। इस पर सहर साहब खामोश न रह सके, बर्जस्ता कह उठे, यूं कहिए बरखुदार की मोहतरमा ने मुशायरा लूट लिया, बेचारी गजल पर तो इल्जाम न लगाइए। ये सुनकर मद्दा और शायर दोनों जबरदस्ती की हंसी हंसकर चुप हो गए। अब भाई साहब तंज कसने में शायरों की जो स्किल है ना वो नेक्स्ट लेवल की होती है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि शायर केवल रोमानी बातचीत करते हैं, रूहानी बातचीत करते हैं, केवल ओहो प्यार इश्क यही सब चलता रहता है तो गलत फहमी है आपकी। बहरहाल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल, बने रहे अपने दाशी के साथ। यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Radio Mirchi, it's hot.
2: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: 92.7 FM,
2: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Na chuskiyon mein, न सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। It's 9 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
3: Tera kya hoga, Kalia?
4: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
3: Ab, Mirchi ka.
5: Radio Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आप कताशी पलटे अपने डायरी के सफ़े और कर दे आपकी नजर बिल्कुल. और जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जिस इंसान से इश्क कर रहे होते हैं सबको पता होता है कि आप उससे इश्क करते हैं, बस उस इंसान को नहीं पता होता है. बिल्कुल यार ऐसा भी होता है कभी कभी. वो मीर तकी मीर साहब का शेर याद आता है मुझे कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है. अब बताओ कितना मुश्किल सा कनिंड्रम है ना, जिसको जिससे प्यार करते हो वो ही नहीं जानता बस. लेकिन फिर मैंने ये भी सुना है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते. मेरे ख्याल से उसको पता है, वो जानना चाह नहीं रहा है. और इसमें एक और उदासी आ जाती है कि नहीं. बहरहाल बड़ा खूबसूरत शेर लगता है मुझे ये, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है. मैं कहूंगा मूव ऑन एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल. आपका ताशी है आपके साथ. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कताशी आपके साथ, और जब किसी से आप सच में प्यार करते हैं या फिर किसी को आप सच में अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, तो आपको ये लगता है कि यार वो शख्स तो कम से कम मुझे सच में देखे, मुझे जाने। मोहम्मद अलवी साहब का एक शेर नजर करता हूं आपके लिए, कहते हैं कि रखते हो अगर आंख तो बाहर से ना देखो, रखते हो अगर आंख तो बाहर से ना देखो, देखो मुझे अंदर से बहुत टूट चुका हूं। और सच में यार हमें क्या चाहिए, एक ऐसा शख्स चाहिए जिंदगी में जो हमारा सच देख पाए, जो देख पाए वो जो हम कह ना पाए। क्या ये बहुत ज्यादा है मांगने के लिए? रखते हो अगर आंख तो बाहर से ना देखो, देखो मुझे अंदर से बहुत टूट चुका हूं। स्टेडियम टू मिर्ची, ताशी आपके साथ।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
6: Listener, mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कथाशी है आपके साथ, और जिंदगी में एक दौर आएगा जब आप अपने कंफर्ट जोन में कैद हो जाएंगे। ये कंफर्ट जोन एक बड़ी ही अजीब सी कैद है, बड़ी आरामदायक कैद है। इस कैद में कैद सा नहीं लगता। मुझे सलीम कौसर साहब का वो शेर याद आता है कि कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद है। कुर्बतें मतलब नजदीकियां। कुर्बतें होते हुए भी फासलों में कैद है, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। आए हाय, इतनी खूबसूरत लाइन लगती है ना मुझे ये, कितनी आजादी से हम अपनी हदों में कैद हैं। याद रखें, कैद आरामदायक भी हो सकती है। स्टेडियम टू मिर्ची, ताशी आपके साथ। It's hot.

0: क्या खा लिया
1: सरदार? मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और वक्त हो चला है मेरे जाने का।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: लेकिन जाने से पहले ताशी अनप्लग्ड में आज एक ऐसा सूफी नगमा आपको नजर कर रहा हूं मैं, जो कि मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि जो उसकी लिरिक्स है ना वो ऐसी कुछ है और उसकी ट्यून है जो वो ऐसी कुछ है, मैं उसको गाता हूं तो मैं कहीं और चला जाता हूं। तो ज्यादा वक्त जाया करे बगैर पेशे खिदमत है आपके उनके अंदाज़े करम।

जी, और इसी के साथ मिर्ची महफिल का आज का सफर यहीं तक था। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहे मिर्ची के साथ। एक से बढ़कर एक गाने सुनाते हैं हम लोग, यही है हमारा वादा। ताशी था आपके साथ, एंड यू नो व्हाट आई से, इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: मनोज कुमार जी, इनकी इमेज थोड़ी ऐसी सीरियस टाइप की थी कि ये पेट्रियोटिक मूवीज बनाते हैं, सोशल इश्यूज पर मूवीज बनाते हैं, लेकिन थे बड़े मजेदार से इंसान। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनकी काफी उम्र हो गई थी, उनसे पूछा गया था कि भाई सारी उम्र आपने काम किया, अब आप आराम कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: बचपन में टीचर्स ने क्लास में खड़ा रखा, फिर फिल्में देखते थे तो लाइन में खड़े रहते थे, फिर स्टूडियो जाते थे तो गेट कीपर लाइन में खड़ा रखता था। उन दिनों डायरेक्टर्स की बड़ी इज्जत होती थी, तो डायरेक्टर बैठे हो तो खड़े रहिए, तो बैठने का मौका मिला तो इस उम्र वरना खड़े ही रहे।
0: क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, मनोज कुमार साहब पर ही पिक्चराइज्ड ये गाना सुन लेते हैं उनकी फिल्म का मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनोज कुमार जी के ग्रोइंग अप ईयर्स दिल्ली में गुजरे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: वो तो दिल्ली थी, फिल्मों का शौक, क्रिकेट और हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं लेकिन दिल्ली में जाना जाता था। प्रेमिका भी हुई जिंदगी में, 5 साल तक दिल्ली में उसके साथ सिनेमा भी देखते। बड़ा भाग्यशाली हूँ कि ब्याह भी उसी से हुआ, बच्चे भी उसी से हुए।
0: वैसे इनका असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था, ये मनोज कुमार कैसे इन्होंने रख लिया?
1: एक फिल्म देखी थी शबनम फिल्मिस्तान की, उसमें हीरो का नाम मनोज था। मनोज नॉर्थ इंडिया में नाम नहीं था, नया नाम लगा। मैंने उस वक्त सोचा था जब फरिश्ता बनूंगा तो यही नाम रखूंगा, तब भी फरिश्ते का मतलब नहीं मालूम था, तो उसकी शाबाश मैं अपने बचपन को देता हूँ।
0: ये फरिश्ता बनने की क्या स्टोरी है, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनोज कुमार जी फिल्मी दुनिया में आके एक्टर नहीं फरिश्ता बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या स्टोरी शेयर की थी।
1: खास ये कि मैंने फिल्म जुगनू देखी थी, मुझे पता ही नहीं था सिनेमा क्या होता है। उसमें जो पात्र थे वो उनकी डेथ हो जाती है, फिर दूसरी फिल्म मामू ने शहीद दिखाई, उसमें भी वही दिलीप कुमार साहब थे, उसमें भी डेथ हो जाती है। मैंने रात को सो नहीं रहा था तो माँ ने पूछा क्यों सो नहीं रहे। मैंने कहा बीजी आदमी कितनी बार मरता है। कहा एक बार। मैंने कहा जो दो तीन बार मरे। कहने को फरिश्ता हुआ। मैंने करवट लेकर सोचा कि मैं फरिश्ता बनूंगा। दानत मुझे पता ही नहीं था फरिश्ता होता क्या। जब पता लगा तो बड़ी शर्म आई अपने आप पे। फरिश्ता सोचे साले तू शैतान है, फरिश्ता बस वो चिंगारी थी।
0: बस इसी चिंगारी से इन्होंने आग पकड़ ली और अपना एक ब्रिलियंट फिल्मी करियर बनाया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुराने जमाने में अक्सर फिल्मों में काम करने के लिए लोग अपने घर से भाग आते थे क्योंकि घर वाले तो इसकी इजाजत नहीं देते थे। तब फिल्मी प्रोफेशन को अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में मनोज कुमार जी ने फिल्मों में काम करने का जो उनको शौक था और घर से जब वो आए दिल्ली से बॉम्बे, इसके बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। ये चिंगारी 10 साल की एज में लगी, अंदर ही अंदर खोलती रही और फिर ऊपर वाला मेहरबान था। मेरे वालदैन माता पिता मर्यादा और संस्कारी थे, लेकिन लकीर के फकीर में उन्हें अपने खून पे भरोसा था, तो मैं उनकी आज्ञा के साथ आया, मैं घर से भाग के नहीं आया। फिर 1956 में मैं 9 अक्टूबर को मुंबई आया
0: और 1957 में फैशन नाम की फिल्म में उनको एक छोटा सा रोल भी मिल गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: 1956 में जब मनोज कुमार जी दिल्ली से बॉम्बे आए तो उनको स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रगल नहीं जिसका जिक्र अक्सर दूसरे एक्टर्स करते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चाचा चाची यहीं थे, हमारा यूनाइटेड फैमिली है, घर में रहने की कोई तकलीफ नहीं थी, खाने की कोई तकलीफ नहीं थी। चाचा मेरे बड़े बहुत सपोर्ट थे, चाची मेरी दोस्त भी थी और माँ भी थी। लेकिन ऐसा वक्त आया था कि ट्रेन मिस हो जाए तो प्लेटफॉर्म पे भी सोया, पुलिस ने डंडा भी मारा, कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए, मकान बंद हो गया, तो लॉन्ड्री में भी सोया, ईरानी होटल में भी सोया, और हर दुकान पे अपना उधार होता, उनको मेरी शक्ल देख लेता था कि आदमी ईमानदार है।
0: भाई रोटी कपड़ा मकान की सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: मनोज कुमार जी बकायदा अपनी मम्मी पापा की परमिशन, उनके आशीर्वाद से दिल्ली से बॉम्बे आए थे 1956 में फिल्मों में काम करने के लिए। बॉम्बे शहर में उनके चाचा चाची भी रहते थे जिनके घर में रहते थे और फिल्मों के लिए ट्राई करते थे। फाइनली उनको एक छोटा सा रोल मिला 1957 में। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने इसके बारे में क्या शेयर किया था।
1: पहली फिल्म में फैशन थी, 19 साल की उम्र में 90 साल का बूढ़ा बना के भिखारी एक्स्ट्रा आया था मैं। फिर सहारा फिल्म थी, उसमें मीना कुमारी जी के साथ 5-7 सीन मिले। फिर चांद फिल्म थी, बलराज सहनी साहब मीना कुमारी जी के साथ फिर सीन मिले। फिर रवेल साहब की नजर पड़ी, उन्होंने पसंद किया और फिल्म कांच की गुड़िया में हीरो लिया।
0: बस इसके बाद तो लड़के की गाड़ी निकल पड़ी। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: कलाकार को तालियां भी मिलती हैं, गालियां भी मिलती हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इन दोनों पर मनोज कुमार जी कैसे रिएक्ट करते थे, एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, सुनिए।
1: कभी टीवी पे या किसी प्रोग्राम पे तारीफ हो, मुझे लगता मैं इस लायक नहीं है। फिर एक मिनट सोचता हूँ कि यार ये शब्द मेरी माँ जिंदा होती वो सुनती तो फिर तो ठीक था, अब माँ नहीं है, मेरे सुनने से क्या फायदा। आलोचना भी होती है, शर्माते कई जेनुअन करते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं, शर्माते वो भोंगते रहे, कारवां चलता रहे।
0: वेल हाउ स्वीटली ही मेंशन्ड हिज मदर। वैसे उनके मदर फादर के गुजर जाने के बारे में जब उनसे एक बार बात की गई थी, तब सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मुझे ये नहीं याद कि वो कौन से सन में गए, कौन सी डेट में गए, क्योंकि शायद मेरे सबकॉन्शियस ने माना नहीं। अब भी कभी कभार बेवकूफी से सिगरेट सुलगाने की कोशिश करता हूँ, यूं देख लेता हूँ, माँ तो नहीं देख रही, पिताजी तो नहीं देख रहे।
0: हाउ स्वीट इज दैट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

0: बॉम्बे की फिल्मी दुनिया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई मैं अक्सर मुंबई को बॉम्बे बोलती हूँ, बिकॉज जिन दिनों की हम बात करते हैं तब उसे बॉम्बे ही कहा जाता था। तो बॉम्बे की फिल्मी दुनिया के बारे में एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए मनोज कुमार जी ने क्या कहा था।
1: बड़ा ह्यूमन प्रोफेशन है, बहुत इंसानियत है यहाँ, बहुत जज्बात है यहाँ, बहुत खुशकिस्मत है वो लोग जो इस प्रोफेशन में है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमने जो इस इंडस्ट्री में आ गए, दाल रोटी के साथ रहने को अच्छा घर, सफर के लिए अच्छी कारें मिल गई। लेकिन हमारे अंदाता तो हमारी जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन तभी तक आपका साथ देगी जब तक आप अच्छा काम करेंगे। वरना ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि यहाँ दादा साहब फालके भी रणजी स्टूडियो के बाहर केदार शर्मा साहब से कहते हैं, मेरे पास काम नहीं, मुझे काम दिला दो। ये आयरनी है, इसमें जुल्म भी है।
0: क्या बात है, दर्द भी हम ही देंगे, दवा भी हम ही देंगे। फिलहाल हम आपको एक गाना देंगे यहाँ पे पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: मनोज कुमार जी, जिन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि काफी पेट्रियोटिक या सोशल इश्यूज वाली मूवीज इन्होंने बनाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मनोज कुमार जी, ये जो भारत कुमार बने, इस पर सुनिए उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: भारत कुमार बनने की कोशिश नहीं की मैंने, मुझे भारत कुमार बनाया गया। उपकार में किसान की कहानी, किसान कहाँ बसता है, भारत कहाँ है, गांव में है, मैंने नाम भारत रख दिया। और हमारी देश की जनता बड़ी श्रद्धालु, उनको पसंद आ गया, उन्होंने, मैंने हरि कृष्ण से अपने आप को मनोज कुमार बनाया, उन्होंने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया।
0: वेल, ये भारत कुमार का नेम टैग, इससे कितने कंफर्टेबल थे मनोज कुमार जी, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
3: पुरानी चीज़ विद चारू ओनली।

0: मनोज कुमार जी को ये जो भारत कुमार का टाइटल दिया गया था, इससे ये कितने कंफर्टेबल थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उसमें मुझे बहुत कठिनाइयाँ आई। बहुत साल पहले मैं परिवार के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। सिगरेट का तब शौक था, सिगरेट पिया। एक नौजवान लड़की आई और उसने मुझे डांटा, आप भारत होकर सिगरेट पी रहे हो, aren't you ashamed? जब सिगरेट पीता था तो छुप के कि कोई फोटोग्राफ को फोन करता।
0: वेल, इस टैग से मनोज कुमार जी में कुछ चेंजेस भी आए थे, जिनके बारे में करते हैं हम बात थोड़ी देर के बाद। राइट हियर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनते रहिए मिर्ची।

लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. Purani Jeans with Charu. Only on

0: मनोज कुमार जी ने एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था कि एक बार किसी आउटिंग पे वो पब्लिकली स्मोक कर रहे थे तो किसी फैन ने आकर उनको डांट दिया कि आपको भारत कुमार कहा जाता है, आप ऐसा कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बाद मनोज कुमार साहब अपने पब्लिक कंडक्ट में काफी कॉशियस हो गए। सुनिए उसे इंटरव्यू में इसके आगे उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उसके बाद जो फिल्में की उसमें मैंने हीरोइन को टच नहीं किया कि सीरियस बात कर रहा है तो ये चीप ना हो जाए, उन्होंने सुधारा मेरे को। बड़ा बोझ है इस नाम का मुझ पे, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां डालता है। चलो भारत कुमार भी आशीर्वाद है, ईश्वर का, जनता का, बोझ भी आशीर्वाद। लेकिन जब लोग उस श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ मिलते हैं, मोहब्बत के साथ मिलते हैं तो इंसान को रुला देते
0: हैं। हाउ स्वीट इज दैट। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची। ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: तेरा क्या होगा कालिया?
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

दिल तेरी चाल ढाल हाल बाल सब बवाल सब गजब तेरी चाल ढाल हाल बाल उफ़ो हिप्स लिप्स

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।
2: श्री राम
1: HD2, it's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। FM HD2.

0: Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हर सफलता से पहले दुख और स्ट्रगल से गुजरना जरूरी होता है? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी क्या होता है सिस्टर श्रेया कि ईगो जो है दैट कैन ऑल्सो इंजीनियर समथिंग एल्स इन यू। कई बार क्या होता है, वो आप कह रही थी ना जहाँ हर्ट है वहाँ ईगो है, बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन कभी कभी वो हर्ट जो है वो आपको कुछ करने के लिए भी मजबूर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब अंग्रेजों ने जेआरडी टाटा को मना कर दिया था होटल में जाने से, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो उन्होंने वहीं पे ताजमहल बोल के होटल बना दिया, ताज होटल की वहाँ पे शुरुआत हुई। वो थॉट प्रोसेस समवेयर डाउन द लाइन दैट हर्ट प्रॉब्ली प्रोपेल्ड हिम। जब लंबोर्गिनी जो ट्रैक्टर बनाते थे, फिरोशियो लंबोर्गिनी शायद उनका नाम था, वो ट्रैक्टर बनाते थे और उनके पास एक फरारी गाड़ी थी और उनको लगा इस फरारी गाड़ी में क्लच की दिक्कत है, तो वो गए थे फरारी से मिलने, फरारी के जो ओनर थे उनसे मिलने, और फरारी ने उनको धुतकार दिया कि तुम ट्रैक्टर बनाने वाले हो, तुम ट्रैक्टर ड्राइवर हो, अपनी औकात में रहो। तो उनको वो हर्ट इतना महसूस हुआ, बेइज्जती इतनी ज्यादा उनको महसूस हुई, उन्होंने बोला ठीक है अब इस हर्ट को मैं आगे लेके इसको तब्दील करके मैं लंबोर्गिनी गाड़ी बनाऊंगा जो फरारी बनाती है, तो मैं लग्जरी गाड़ी बनाऊंगा और ऐसी गाड़ी बनाऊंगा। और ही इज नोन टू से कि जो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है वो फरारी खरीदता है, लेकिन जो जिंदगी में बन चुका है कुछ वो लंबोर्गिनी खरीदता है। तो ईगो कहीं ना कहीं प्रोपेल्ड हिम, और वो जो नोकझोंक है वो आज भी चलती रहती है फरारी और लंबोर्गिनी के बीच में, इन वन ऑफ द बेस्ट कार कंपनीज लग्जरी सेगमेंट में लंबोर्गिनी। तो कहीं ना कहीं ईगो ऑल्सो अच्छे तरीके से अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपको प्रोपेल भी करती है।
4: कई बार क्या होता है, हम कई केसेस को देख करके सोचते हैं कि ये मे बी फैक्ट है। अगर हर्ट आपको विक्ट्री की तरफ लेकर के जाते तो हर व्यक्ति जो हर्ट हुआ है उसको सफल होना चाहिए,
3: पर ऐसा नहीं होता ना सिस्टर, बिकॉज
4: नहीं नहीं मतलब वो क्यों हुआ वो भी तो समझना है ना। कहीं हर्ट होते हैं वो डिप्रेस होकर सुसाइड भी कमिट कर रहे हैं, लेकिन उनके केसेस में भले वो हर्ट हुए थे बट वो हर्ट, वो जो पेन थी उसने एक अवेकनिंग का काम किया,
3: बिल्कुल
4: ट्रिगर का काम किया। जो उनकी सफलता है वो उनकी अवेकनिंग, फिर मेहनत, फिर डिटर्मिनेशन, उससे हुई है, हर्ट से नहीं हुआ। अगर वो हर्ट हो जाते और अपने को हील नहीं करते, अवेकनिंग हो सकता है, एक हर्ट आपके लिए ट्रिगर का काम कर सकता है, लेकिन अगर वो अपने को उस दिशा में, उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं कन्वर्ट करते तो कभी भी वो सफलता नहीं होती। जैसे कोई हर्ट है, अगर वो अपने को नहीं पॉजिटिव दिशा में कन्वर्ट करता तो वो डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ भी जाता है कि नहीं जाता। इट्स नॉट हर्ट विच इज लीडिंग टू सक्सेस, ये नहीं हम कह सकते। नहीं तो हर, अगर आप इसको फैक्ट की तरह कहते हैं तो हर हर्ट व्यक्ति सफल होना चाहिए, लेकिन हाँ पेन अवेकनिंग का काम कर सकता है। फिजिकल लेवल पर भी आप ले लें, आज आपको बॉडी में कोई पेन होता है वो एक अवेकनिंग का काम कर देता है जब डॉक्टर कहता है आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। लेकिन अब आपको लाइफस्टाइल तो ठीक करना पड़ेगा ना, पेन ने नहीं आपको बदला, उसने आपको एक मैसेंजर की तरह बताया कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। अब कई व्यक्ति ठीक कर लेते हैं, वो डाइट करना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, टाइम पर सोते हैं, माइंडलेसली स्क्रॉल करना बंद कर देते हैं, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज, देयर चेंज लीड्स टू बेटर हेल्थ।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on Mirchi. It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: सफलता की असली चाबी क्या होती है? मेहनत, पेशेंस या सही सोच? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये जो एग्जांपल देने समझ में भी आ रहा है, सही भी लग रहा है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो उस परिस्थिति में थे नहीं। एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, उसको उसका कोई काम नहीं है एक लग्जरी गाड़ी के साथ, क्योंकि वो ट्रैक्टर बनाता है। या फिर टाटा वाला जो एग्जांपल दिया कि भाई वो होटल इंडस्ट्री में थे ही नहीं, उनका कोई काम ही नहीं था उधर। या फिर ऐसे बहुत एग्जांपल है, जैसे मुझे याद है कि फ्लिंटॉफ ने 2007 के वर्ल्ड कप के समय जाके युवराज सिंह को,
4: बात तो सफलता की कर रहे हैं ना?
3: हाँ, बिल्कुल।
4: हम इसमें बात क्या कर रहे हैं, सफलता वो भी कोई छोटी मोटी सफलता नहीं, असंभव को संभव कर दिया।
3: असंभव को संभव किया, बिल्कुल।
4: Which was impossible, वो उन्होंने पॉसिबल कर दिया। पर वो कैसे किया उन्होंने? वो मेहनत से किया उन्होंने।
3: मेहनत से किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसका प्रोवोकेशन जो है वो कुछ और था,
4: ट्रिगर पेन था। पेन अवेकनिंग का काम कर सकता है, लेकिन सफलता मेहनत से थी।
3: जी,
4: हम क्या कह रहे हैं, दर्द सफलता को लेकर आ रहा है।
3: वो कह रहे हैं दर्द के कारण जो मुझ में अवेकनिंग आई, जो मुझे रियलाइजेशन आया, उस वजह से मैंने उसको कैटलिस्ट बना के ये काम किया।
4: एब्सोल्युटली द राइट वर्ड इज कैटलिस्ट। वो कैटलिस्ट का काम कर सकता है, वो ट्रिगर का काम कर सकता है, वो अवेकनिंग का काम कर सकता है। उसके बाद भी कई है जो कुछ भी नहीं करेंगे।
3: बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन एग्जाम्पल हम उन्ही का लेते हैं जो बेहतर कर पाते हैं।
4: जरूरी भी है, क्योंकि हम वही एग्जाम्पल्स लेना चाहते हैं जो लोगों के अंदर होप क्रिएट करे।
3: बिल्कुल,
4: सब जीवन में हर्ट एक्सपीरियंस करते हैं।
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
4: लेकिन हम वही एग्जाम्पल्स को औरों के साथ प्रोपोगेट करना चाहते हैं कि देखो आप हर्ट होकर के भी उठ सकते हैं, और आप उस नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं किसी पॉजिटिव चीज में। उस माना दूसरा तरीका क्या है कि आप नेगेटिव स्पाइरल में जाकर के, एंड वी हैव लॉट ऑफ दोज एग्जाम्पल्स
3: आल्सो,
4: कि फेलियर हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, दे एंडेड देयर लाइफ। ऐसे एग्जाम्पल्स भी हम रोज सुनते हैं, और बड़े बड़े सुनते हैं, बड़े बड़े। आई रिमेम्बर, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर, कैफे कॉफी डे का
3: बिल्कुल
4: शायद कोई ओनर था। ये ऐसे बहुत बड़े बड़े भी हैं। अब नाउ दिस इज वन इंस्टेंस, वेरी सिमिलर, कि उन्होंने अपने जीवन में दुख का अनुभव किया, लेकिन वो उससे बाहर नहीं निकल पाए। तो उनके लिए जो उन्होंने ऑप्शन चूज किया, एंडिंग देयर लाइफ, किसी ने ऑप्शन चूज किया नहीं, आई विल डू समथिंग एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज।
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या ईगो को ठेस लगने के बाद ही इंसान सबसे ज्यादा ग्रो करता है? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो इसमें मुझे आपसे एक चीज पूछनी सिस्टर श्रेया, कि ये जो कैटलिस्ट का काम है वो आपके मेंटल स्थिति पे है कि आप उसको उस समय किस तरह लें, बट कभी कभी क्या होता है रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। और इसका एग्जांपल मैं जो आपको देना चाहता हूँ, 2007 के वर्ल्ड कप के दौरान एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज सिंह को जाके कुछ अपशब्द बोल दिए, स्लेजिंग वगैरह की, और युवराज सिंह बाद में इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अब मैं तुमको बताता हूं। और अगला ओवर जो है स्टुअर्ट ब्रॉड कर रहे थे, और जिंदगी में हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि T20 मैच में 6 बॉल पे 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे, और वो था कि तुमने मेरे ईगो को हर्ट कर दिया, तुम मुझसे पूछ रहे हो ना, मैं क्या तुम्हें जवाब देता हूँ। तो द वर्ड्स दैट ही ऑलमोस्ट यूज, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। तो ये जो शब्द बोल रहे हैं, जो इंसान है जो खुद बोल रहा है, जिसने खुद ये किया है, वो ईगो से ही काम कर रहा है। तो ईगो हर्ट होने पे कभी कभी आप ऐसा काम कर देते हैं जो इसके पहले पॉसिबल नहीं था, आपके दिमाग में भी नहीं था, मुझे जरूरत नहीं 6 बॉल पे 6 छक्के मारने की।
4: कभी कभी हमारी जो लैंग्वेज है वो हो जाती है। अभी जो आपने एग्जाम्पल दिया वो एग्जाम्पल एग्जैक्टली क्या है कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा कर्म जो है वो बताएंगा कि हम कितने सफल है। जो हम कहते हैं ना, उसका शोर नहीं मचाओ, सफलता शोर मचाएंगे। सो दैट इज वेयर देयर वाज समबडी हु वाज स्लेजिंग हिम। एक्चुअली वीकनेस क्या होती कि वो भी वापस स्लेज करते। वीक जो व्यक्ति होता वो क्या करता, हर्ट व्यक्ति क्या करता,
3: मैं वापस बोलता हूं।
4: अच्छा ठीक है, तुम मुझे ऐसा बोल सकते हो तो मैं भी वैसा बोल सकता हूँ। जो हम फील्ड पर देखते ही है ना, हम फील्ड पर देखते हैं किसी ने स्लेजिंग करी, उसने भी करी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पर इस माइंडसेट में क्या था कि मुझे आपके लेवल पर नहीं गिरना है, मुझे इस तरह से उसका रिटर्न जवाब नहीं देना है। मैंने कैसे आपको जवाब देना है, अपने कर्म से, अपने एक्ट से, अपनी सफलता से, वो तो बिल्कुल ठीक है। अब आप उसको ईगो कहें या आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट कहें, एक्चुअली वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर वो ईगो होती तो वो वाला रास्ता अपनाते कि वो वहां पर खड़े होकर के बिल्कुल उनके लेवल तक भी गिर सकते थे।
3: पर
4: उन्होंने चूज किया कि मुझे, यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी डोंट हैव टू कॉपी पीपल।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ईगो होता क्या है और ये हमारी पर्सनालिटी को कैसे शेप करता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक बहुत अच्छी किताब पढ़ रहा था, उसमें बहुत ब्यूटीफुली लिखा हुआ था कि ईगो का बहुत सिंपल डेफिनेशन है, और ये आप याद रखें, जो भी आई एम के बाद आता है वो ईगो है। तो मैं फला हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट, वो ईगो है, चाहे वो कुछ भी हो। तो उसमें वो कहते हैं कि अगर आप ये भी बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं डांसर हूँ, सिंगर हूँ, जो भी हो, वो ईगो है, क्योंकि आप पैदा ऐसे नहीं हुए, ये आप बने। और थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि हमने उसी को अपनी आइडेंटिटी बना ली,
4: हमने अक्वायर किया ना वो प्रोफेशन, चाहे डॉक्टर है। देखो, एक है मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है,
3: बिल्कुल,
4: एक है मैं डॉक्टर हूँ, दोनों में क्या फर्क है?
3: कि मैं वो नहीं हूँ, आइडेंटिटी नहीं है मेरी वो।
4: पर कैसे पता चलता है कि मैं उस कॉन्शियसनेस में चला गया हूँ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये, कई बार वर्ड्स की बात नहीं है, ये कॉन्शियसनेस की बात है। कॉन्शियसनेस में वो चीज होती है। अगर मेरी कॉन्शियसनेस में है कि मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मुझे पता है कि ये मेरा प्रोफेशन है
3: जी,
4: तो फिर अगर मेरी फ्रेटर्निटी के बारे में कुछ कहता है
3: तो मुझे बुरा लगता है,
4: तो मुझे बुरा लगता है,
3: या मुझे अच्छा लगता है।
4: एक्सपीरियंस है, कहते हैं आजकल तो डॉक्टर सब करप्ट हो गए हैं, सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए, आप उनको ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ये किसी एक का ओपिनियन है मेरी फ्रेटर्निटी के बारे में, वो उसका ओपिनियन है, बट मुझे उस समय याद नहीं है कि मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है।
3: मैं डॉक्टर नहीं हूँ।
4: सो द मोमेंट आप किसी भी रोल के साथ, किसी भी लेबल के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो उस चीज के बारे में जब भी कोई कुछ कहेगा
3: तो मुझे बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा,
4: क्या अच्छा लगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: खुद की पहचान का मतलब क्या होता है और अपनी ट्रू आइडेंटिटी कैसे डिस्कवर करें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरा अगला सवाल यही था कि अब तो फिर हुए माए तो मैं क्या बोलूं फिर?
4: एब्सोल्युटली, इसलिए देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों रहा है। शुरू से ही जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, सोक्रेटिस हैं, सबने क्या कहा, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया
3: तब फिर आप बहुत खुश रहेंगे जिंदगी में,
4: सफल रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि बाकी सब हमने अक्वायर किया है। बॉडी तक भी, बॉडी है, रोल है, लेबल्स है, अकम्पलिशमेंट्स है, सब आपने अक्वायर किया है। जो आपने अक्वायर किया है वो विनाशी है, पेरिशेबल है। इम्पेरिशेबल क्या है, अविनाशी क्या है? जस्ट दैट एनर्जी, सोल। सो आई एम अ सोल, दिस इज माय बॉडी।
3: बहुत बढ़िया।
4: मैं आत्मा, मेरा शरीर। शरीर के लिए भी आप देखो क्या है, आप कभी नहीं कहते मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ। नहीं बोला
3: मेरा शरीर दर्द कर रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात।
4: सिर दर्द कर रहा हूँ तो आपने कभी नहीं बोला
3: नहीं, मेरा सिर दर्द कर।
4: सो देन दैट मींस दिस बॉडी इज आल्सो समथिंग दैट आई हैव अक्वायर्ड।
3: क्या बात।
4: आई एम दैट बीइंग जो हम कहते हैं अमर अजर अविनाशी, इसलिए कभी कोई मरता नहीं है।
3: अमर अजर अविनाशी,
4: इटर्नल है ना। इटर्नल है, इम्पेरिशेबल है। द मोमेंट यू रियलाइज दैट, फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाता है। फियर ऑफ डेथ क्या है? बॉडी विनाशी है, खत्म होनी है, इसलिए हम कहते हैं मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाएगी।
3: बिल्कुल।
4: कब, वो अलग बात है। आजकल का समय अनसर्टन है, कभी भी हो जाता है।
3: बिल्कुल।
4: पर फैक्ट है कि मिट्टी की है, मिट्टी में मिल जाएगी, इट्स पेरिशेबल। लेकिन सोल के लिए क्या कहते हैं, इम्पेरिशेबल है, इटर्नल है। पानी उसको डुबो नहीं सकता, आग उसको जला नहीं सकती। यू नो, अंडरस्टैंडिंग दैट और उस कॉन्शियसनेस में रहने से ही आप फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
3: बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत बढ़िया।
4: बाकी सब चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक और ले, अगर आपको याद रहता है कि ये मेरी बॉडी है, और अगर कोई बीमारी भी आती है तो आपको ये रहता है कि ये, एग्जांपल एक और ले, अगर आपको याद रहता है कि ये मेरी बॉडी है, और अगर कोई बीमारी भी आती है तो आपको ये रहता है कि ये बीमारी शरीर को आई है।

0: आंसर है आई एम सेपरेट, आई एम पीसफुल, आई एम लविंग, आप वो एनर्जी रेडिएट करते हैं, आप देखेंगे बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसलिए दो जनों को सेम बीमारी होती है लेकिन दोनों की हीलिंग जो पीरियड है वो बहुत अलग अलग होता है।
1: तो जब बीमार भी हो तो ये ना बोलना कि मैं बीमार हूँ, कहना कि मेरे शरीर में कोई बीमारी,
0: ये कॉन्शियसनेस
1: बहुत बढ़िया,
0: मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, इनफैक्ट और ज्यादा हैप्पी हूँ। और मेरा वाइब्रेशन ही सी हमारा हर थॉट जो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है उसको इम्पैक्ट करता है। बॉडी क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ही तो है ना। आप जब बार बार कहते हैं मैं बीमार हूँ, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, वो सेल्स जो है हील नहीं हो पाते। आप बेस्ट डॉक्टर होगा, बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, इसलिए क्यों लाइन आते हील दाई सेल्फ, डॉक्टर कैन ट्रीट,
1: लेकिन हीलिंग हमें खुद करनी,
0: हीलिंग आपको खुद करनी पड़ेगी।
1: बहुत बढ़िया,
0: आपकी कॉन्शियसनेस हीलिंग को स्टॉप कर देती है, सिर्फ ये कॉन्शियसनेस कि मैं शरीर हूँ हील नहीं होने देती।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
6: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा। तू किस तरह टप आया?
5: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
7: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने।
5: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
8: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
5: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू। फिल्म इश्कनामा।
9: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो हमारी सोच, इमोशंस और पर्सनालिटी को कैसे मोल्ड करता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लेकिन जो दिमाग हमारा खराब किया है, कहीं ना कहीं मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी दोषी ठहराऊंगा। मुझे याद है जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हम सब अपने आप को, मैं बच्चन साहब से बहुत प्रभावित रहा हूं, तो मैं अपने आप को कहता था हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। ये ईगो का ही एक, कहीं ना कहीं एक ईगो की लाइन है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? तो हम एक दूसरे को ये लाइन कहते रहते थे कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर जब भी मेट आई तो मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो बहुत बार क्या होता है कि इनसे हम बहुत, या रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह, हम खेलते खेलते भी अपने आप को यही डायलॉग बोलते थे। तो हमें जो हमारी जो लर्निंग रही है, कहते हैं कि फिल्मों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रभावित होते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी हमारा ईगो बढ़ा है।
4: इसलिए हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत जिम्मेवारी है
3: जी।
4: भले हम कह देते हैं कि नहीं ये तो एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म जो कुछ भी कंटेंट क्रिएट करके बाहर दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन्फ्लुएंस नहीं करते। हम जो देखते सुनते पढ़ते हैं वो हर व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करता ही है। इसलिए जो कंटेंट अगर हम क्रिएट करते हैं, अगर वो किसी को एम्पावर करता है, किसी के अंदर ह्यूमिलिटी क्रिएट करता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। उससे भी बहुत दुआएं कमाई जाती हैं। ऐसी कई फिल्में हैं, आप देखें, जिन्होंने लोगों के जीवन को भी बदल दिया।
3: बिल्कुल है,
4: ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड भी होंगे, पर कई बार वो कंटेंट देख करके उनको इतनी ताकत आ जाएंगे। सो कंटेंट हैज लॉट ऑफ पावर। कंटेंट से कैरेक्टर बनता है, चित्र से चरित्र बनता है।
3: बिल्कुल,
4: तो हम इतना लाइटली उसको नहीं ले सकते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
6: EKG and phlebotomy,
5: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: फिल्म्स हमारे जीवन एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस पर कितना गहरा असर डालती हैं। आइए समझते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि जो हम देखते हैं वो जरूरी नहीं है सच हो। वो एक राइटर का इजाद किया हुआ एक डायलॉग है जो उस समय इम्पैक्ट लाने के लिए कहा जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में आता है कि झुकेगा नहीं साला, वो हम बहुत सारे चीज़ों में डाल देते हैं, लेकिन द आइडिया वॉज उस समय उस कैरेक्टर के लिए वो जरूरी था। लेकिन इससे मैं दूसरी चीज पे आता हूँ क्योंकि ईगो की बात हो रही है।
6: देखे जैसे आप अभी कह रहे हैं लिंगो भी बनने लगता है।
5: बिल्कुल होता है,
6: क्योंकि अगर वो कोई चीज हीरो कर रहा होता है ना
5: तो हम भी उससे प्रभावित होते हैं।
6: कूल लगता है वो।
5: बिल्कुल,
6: पिछले बार भी कई बार पढ़ रही थी कि पहले ऐसा होता था कि फिल्म्स के अंदर भी जो विलन का रोल है वो कोई और करता था, एंड जब आप बाहर आते थे तो आपको थोड़ा सा उसके प्रति एक डिस्गस्ट सा फील होता था। मैंने यू ऑलवेज एसोसिएटेड योरसेल्फ विद द हीरो जो है, वो काइंड होता था, कंपैशनेट होता था, ऑनेस्ट होता था, तो भी एक इन्फ्लुएंस था। लेकिन ग्रेजुअली अगर आप देखें कि हमारे जो फिल्म्स हैं उसके अंदर कभी कभी अभी विलन का रोल भी हीरो प्ले कर रहा होता
5: है। बिल्कुल,
6: तो आप फिर किस चीज को एंडोर्स करते जा रहे हैं कि अल्कोहल भी ठीक है, मारना भी ठीक है, वायलेंस भी ठीक है, जो अब्यूसिव लैंग्वेज है वो भी ठीक है, क्योंकि वो तो कूल लगता है ना, वो तो बहुत मैनली लगता है। सो वी कैनॉट रियली से कि इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता, इन्फ्लुएंस तो पड़ता ही है। फिर हम कहते हैं सोसाइटी उस दिशा में जा रही है, समाज उस दिशा में जा रहा है, तो समाज के ऊपर उन्हीं चीजों का तो इम्पैक्ट पड़ता है जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। दिलीप सिंह चौहान हैं, जयपुर से लिखते हैं कि व्हाट इज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सही कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाएं अपनी जिंदगी में?
2: वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस एक बेसिकली आप एक एलिवेटेड स्टेज में जाकर के सब कर्म कर सकते हैं। आप अगर कहें, फॉर एग्जांपल मैं उनको कह भी दूं कि वर्क लाइफ बैलेंस में आप जितना समय वर्क पर देते हैं उतना समय आप घर पर दें, बट आई डोंट नो व्हाट हिज प्रोफाइल जॉब है।
1: बिल्कुल।
2: आज कोई मिलिट्री में है,
1: वो नहीं पता।
2: आज कोई सर्जन है, उसको अचानक रात को भी उठ करके जाना पड़ता है। तो आपका अगर वो वर्क है और प्रोफेशन है, वो डिमांड करता है, किसी का 8 घंटे करता है, किसी का 12 घंटे करता है, किसी का 6 घंटे भी करता है, 6 महीने भी करता है, दे डोंट मीट देयर फैमिलीज फॉर 6 मंथ्स ऑल्सो, लेकिन जितना समय आप हैं उनके साथ, पहली चीज अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो करें। कहाँ आप कट कर सकते हैं, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? आजकल सोशल मीडिया बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जो आप कट कर सकते हैं, इनकेस इफ यू कैन स्पेंड मोर टाइम, डू इट, दैट इज वन। सेकंड, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो छोड़ दें, गिल्ट में नहीं जाए।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात।
2: नहीं जाए गिल्ट में, अगर आपका वर्क डिमांडिंग है, वो आपको करना ही है, तो उस ऑप्शन को खत्म कर दें, अपने मन से गिल्ट को निकाल दें। अगर आप अब 2 ही घंटे अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, मेक इट क्वालिटी।
1: मेंटली प्रेजेंट रहिए, सिर्फ फिजिकली नहीं,
2: मेंटली प्रेजेंट रहिए। उस समय पर भी मेल्स चेक कर रहे हैं या वर्क प्लेस पर हैं या आई कांटेक्ट नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें हमें पता है, बहुत समय नहीं चाहिए होता, क्वालिटी टाइम चाहिए होता है।
1: बिल्कुल, बहुत सही।
2: थर्ड, आप अगर नहीं भी है, सो फैमिली के साथ हमारा जो कनेक्शन है ना, इट इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज वाइब्रेशनल ऑल्सो। तो समझो आज बच्चे का एग्जाम है, आप उसके लिए फिजिकली वहां पर नहीं है, लेकिन एट अ वाइब्रेशनल लेवल ऑल्सो आप सोचते हैं कि उसका बहुत अच्छा होगा।
1: बिल्कुल,
2: वो सफल होगा, आई एम देयर फॉर यू। आप 1 मिनट ही बात करते हैं उसके साथ और कहते हैं बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है आपने सफल होना है, दैट विल ऑल्सो एम्पावर योर चाइल्ड। कई बार उनको टाइम नहीं चाहिए होता, पावर चाहिए होती
1: है। सही बात।
2: आप कहीं से भी दे सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
2: आप मीटिंग में बैठे हैं लेकिन आप सोचे जा रहे हैं, एज अ मदर आप गिल्ट में जा रहे हैं, आई कांट गिव टाइम टू माई चाइल्ड, मैं समय नहीं दे पाती, उसका एग्जाम है। वो जो कहते हैं ना, हर मदर को एक गिल्ट ट्रिप होती है। नहीं करें, या तो छोड़ दें जो आप कर रहे हैं, या आप नहीं छोड़ सकते तो अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एलिवेट कर लें कि आपका वाइब्रेशन भी उनको एम्पावर करे,
1: पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स. गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस. विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी. कंडीशंस अप्लाई.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन.
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzilin, New Jersey. Conditions apply.
5: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा।
6: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है।
5: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने।
7: बागी ते आशिक हद्दां सरहदां टप ही आउंदे ने।
5: इसे तरह दे जनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा।
8: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी।
5: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं। फिल्म इश्कनामा।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: लिसनर एम आई, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो एक क्विक स्पोर्ट्स अपडेट पता कर लेते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स पर।
0: मिर्ची वॉच इट।
1: इंडिया की ऐशा सिंह ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीत लिया है, और पोडियम पे इंडियन डबल धमाका भी हुआ है क्योंकि ओलंपिक स्टार मनु भाकर ने ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। मतलब टारगेट्स भी हिट हुए और देसी हार्ट्स भी हिट हुए। अब चलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ। वेटलिफ्टिंग प्लेटफॉर्म पर मसल भी फ्लेक्स हुए और तिरंगा भी लहराया गया। राजा मुथु पांडी ने मेंस 65 केजी कैटेगरी में सिल्वर जीता है, और चनम्बम ऋषिकांता सिंह ने मेंस 60 केजी इवेंट में एक और सिल्वर इंडिया की झोली में डाल दिया है। साथ ही साथ 121 केजी स्नैच का पर्सनल बेस्ट भी। वाओ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऋषिकांता को कंग्रेचुलेट करते हुए उनकी डेडिकेशन और परफॉर्मेंस की तारीफ की है। इंडिया इज करंटली 8th इन द कॉमनवेल्थ गेम 2026, स्टैंडिंग विथ 4 मेडल्स, जिसमें से एक है गोल्ड, 2 है सिल्वर एंड 1 इज ब्रॉन्ज। अब चलो तुम्हारे लिए चलाती हूँ कुछ मिर्ची तैयार गाने, तब तक तुम मुझे सोशल्स पर फॉलो करो। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओकरी रोड, इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अटेंशन गाइस, आज का वेदर बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो कहता है मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूँ और फिर 5 घंटे हमारा मूड चेंज करके चला जाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मौसम का हाल चाल पता करने का टाइम आ चुका है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, स्काई इज क्लाउडी लेकिन फील हो रहा है अराउंड 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हवा कह रही है स्वेटर मत पहनो यार, बट दूर भी मत रखना स्वेटर को। अच्छी खबर ये है कि सुबह से 2 बजे दोपहर तक सनशाइन जो है अपनी अटेंडेंस बीच बीच में लगाती रहेगी। सो इफ यू बीन वेटिंग टू ग्रैब योर मॉर्निंग कॉफी, वॉक द डॉग या फिर ऑफिस लंच ब्रेक बाहर एंजॉय करना चाहते हो, दैट्स योर गोल्डन विंडो। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है 3 बजे के बाद, जब ड्रिजल का थोड़ा सा चांस बनता है। कोई बॉलीवुड स्टाइल बारिश नहीं होने वाली लेकिन इतनी हो जाएगी कि फ्रेशली वॉश्ड कार तुमको साइड आई दे सकती है। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 67 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है लेकिन फील होने वाला है 88 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये याद रखो कि ह्यूमिडिटी, सनशाइन ये सब मिलकर ना कभी कभी वेदर को थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करवा देते हैं। और विंड्स काफी काम है, गस्त सिर्फ 7 किलोमीटर पर आवर तक चलने वाले हैं, तो आज हेयर स्टाइल का ज्यादा टेंशन नहीं है। पिछले 24 घंटों में ऑलमोस्ट नो रेन थी लेकिन अगले 24 घंटों में अराउंड 3 मिलीमीटर्स की एक्सपेक्टेड रेनफॉल है, मतलब अम्ब्रेला को आज लीव नहीं मिलने वाली है, साथ में कैरी करना पड़ेगा और साथ साथ में अपना वाटर बॉटल कैरी करना। हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50+++, एंड ऑफ कोर्स एज आई ऑलवेज से, लेयर के प्लेयर बनो। और तुम ऑफ एयर भी मुझसे बातें कर सकते हो, मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल जब तक यही बैठने का कहीं जाने का नहीं, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची आवक at 3 on मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले सोशल मीडिया पर एक नया कैंपेन काफी वायरल हो रहा है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम से इंस्टाग्राम पेज ने बहुत तेजी से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन किए हैं। कैंपेन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम को रिमूव करने की डिमांड कर रहा है और मेरिट बेस्ड एडमिशंस और गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा है। जैसे हर वायरल ट्रेंड के साथ होता है, ऑनलाइन डिस्कशंस भी काफी एक्टिव हो चुके हैं इसके बारे में। देखना यह है कि ये डिजिटल कॉन्वर्सेशन आगे किस डायरेक्शन में जाती है। नंबर टू पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP फिर हेडलाइंस में है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद पार्टी लीडर्स के सेलिब्रेशन का एक वीडियो वायरल हुआ। इस पर क्रिटिसिज्म के बाद पार्टी स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने कहा है कि यंगर जनरेशन और जेंजी अपने इमोशंस और रिएक्शंस को अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं और उनके हिसाब से इस कॉन्टेक्स्ट को सब लोग एक नजरिए से नहीं देख रहे। इंटरनेट एज ऑलवेज इज डिवाइडेड। एंड फाइनली बिहार के सिवान में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर अलेजेडली राइफल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ स्टूडेंट्स इंजर भी हुए थे, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने वार्निंग के लिए हवा में फायरिंग की थी। अथॉरिटीज अब पूरे मामले की जांच कर रही है। एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर का 3 फॉर दिस आवर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है। I'll meet you with more updates in अगले मिर्ची आवर का 3। कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
1: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है पर बच्चन एक ही होता है.
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है.
9: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
10: Very cool.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और टाइम हो गया है क्विक बॉलीवुड अपडेट का. तो विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा ने मुंबई के वर्सोवा एरिया में एक ब्रांड न्यू लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा है. ये अपार्टमेंट करीब 2,644 स्क्वायर फीट का है और साथ में 316 स्क्वायर फीट का एक्सक्लूसिव एरिया है और 3 कार पार्किंग स्पेसेस भी है. मतलब पार्किंग की टेंशन तो टोटली नॉट आउट हो चुकी है. रिपोर्ट्स के हिसाब से इस ड्रीम होम की कीमत अबव 18 करोड़ रुपीस है. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी बिल्डिंग में एक्ट्रेस टबू ने भी कुछ महीने पहले अपना अपार्टमेंट खरीदा था. लगता है इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग काफी ब्लॉकबस्टर हैं. वैसे घर चाहे स्टूडियो अपार्टमेंट हो या सी व्यू पेंट हाउस हो, असली लग्जरी वो होती है जहां पर गर्मा गर्म चाय हो, स्ट्रॉन्ग वाईफाई हो और कुछ मिर्चीदार बैंगर्स चल रहे हो और तुम्हारे चेहरे पर वो ग्लो हो जो सिर्फ ज्वेलरी दे सकती है. ज्वेलरी की बात मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आरके ज्वेल्स की तरफ से एक स्पार्कलिंग ऑफर चल रहा है. सिलेक्टेड एक्सक्विजिट कलेक्शन पर मिल सकता है तुम्हें फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड और आरके ज्वेल्स पर तुम्हें ब्यूटीफुल डिजाइंस के साथ साथ क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप और ग्रेट वैल्यू भी मिलने वाली, क्योंकि थोड़ी सी स्पार्कल तो हर दिन बनती है, राइट? ऑफकोर्स यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है और अभी थोड़ी सी मिर्ची तो बनती है. आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. मेरे साथ बने रहो, मेरा नाम है प्रिसिला. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अगर आज तुम्हारा बर्थडे है तो एक काम करो, कैलोरीज, एज और अलार्म क्लॉक तीनों को आज के लिए इग्नोर मारो। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग टुडे। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और पता है आज तुम्हारा बर्थडे कुछ प्रिटी अमेजिंग सेलिब्रिटीज शेयर कर रहे हैं। कॉमेडी की क्वीन माया रूडोल्फ, जिन्होंने सैटरडे नाइट लाइव और ब्राइड्समेड से दुनिया को हंसाया है। मार्शल आर्ट्स के लेजेंड डोनी येन, द मैन हु मेड एक्शन सीन्स लुक लाइक पोएट्री इन द आईपी मैन फिल्म्स। और निकोलाई कोस्टर वाल्डाउ, यानी कि हमारे अनफॉरगेटेबल जेमी लैनिस्टर फ्रॉम द गेम ऑफ थ्रोन्स भी आज ही के दिन इस धरती पर प्रकट हुए थे। देन वी गॉट एक्टर जोनाथन रिज मायर्स, नोन फॉर द टू। स्पोर्ट्स लवर्स के लिए बेसबॉल सुपरस्टार एलेक्स रोड्रिगेज का भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है। और क्रिकेट फैंस के लिए ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एलन बॉर्डर, जिनका नाम क्रिकेट हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स से लिखा गया है, वो भी आज ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब कि अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है ना, तो टैलेंट, एक्शन, कॉमेडी और स्पोर्ट्स सबका थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन बनकर तुम इस धरती पर आए हो। यानी कि फुल शाइनी पैकेज में गिफ्ट रैप करके तुम्हें ऊपर वाले ने यहाँ पर भेजा है। आज खुद को ट्रीट देना बिल्कुल मत भूलना। एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन, एक एक्स्ट्रा केक का स्लाइस, एक एक्स्ट्रा सेल्फी और एक एक्स्ट्रा स्माइल मेरी तरफ से। डॉक्टर मना नहीं कर सकता, क्योंकि आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं होती है। और बर्थडे विशेस, अपने बर्थडे शाउट आउट्स या फिर अपनी पार्टी के बर्थडे इनवाइट्स तो मुझे भेज सकते हो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चिपक के यही बैठने का आने वाले मिर्चीदार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzylin, New Jersey. Conditions apply.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अब खनखनाने की और चमचमाने की बारी आ चुकी है क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर।
2: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,065 $4,065 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी गोल्ड ज्वेलरी है जो आपने दुनिया के किसी भी हिस्से से किसी भी ज्वेलर से खरीदी, राज ज्वेल्स की कैरेटोमीटर के साथ आप अपना पुराना गोल्ड टेस्ट कराते हुए एक्सचेंज कर सकते हैं फुल गोल्ड एक्सचेंज वैल्यू में, जहां आप नई 22 कैरेट गोल्ड के डिजाइन हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी हो, आप एक्सचेंज करके नए सोने के गहने घर ले जा सकते हैं। और हमारी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें आप 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट पे, 9 इंस्टॉलमेंट में, बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी, बिना किसी डाउन पेमेंट के गोल्ड का प्राइस लॉक आज करके ज्वेलरी घर ले जाएं और 9 महीने में पैसे दें। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड एंड सिल्वर का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे बातें करनी है तो इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और ये है मिर्ची आवर का ट्रीट, जहाँ पे तीन अपडेट्स तुम्हें मिलती है। सबसे पहले क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा टनबर्ग जॉइंड अ प्रोटेस्ट इन लंदन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन स्टूडेंट्स। द गैदरिंग वाज हेल्ड इन सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट इन इंडिया फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ग्रेटा सेड दैट द इंडियन स्टूडेंट्स मूवमेंट हैड गिवन पीपल होप। सेफ टू से दैट टुडेज कन्वर्सेशंस आरंट जस्ट ट्रेंडिंग ऑनलाइन, दे आर ट्रैवलिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स टू। नंबर टू पर स्पीकिंग एट एन इवेंट इन हैदराबाद, आरएसएस चीफ मोहन भागवत सेड that the LGBTQ plus community is an integral part of society and deserves dignity and equal respect. He also spoke about the different ways people may come to identify as LGBTQ plus. And finally, a sad story coming from Seattle in the US. Authorities say multiple people were shot during a major food festival. At least two people have died, several others were injured, and a large police response followed. As of now, officials are continuing their investigation and have not released complete details about a suspect. Our thoughts are with everyone affected by this tragic incident. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hu Prisila tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: Listener mein back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzylin, New Jersey. Conditions apply.
5: इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो।
6: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स एंड ओपन डांस फ्लो एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर ऑल जस्ट फॉर $65. फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट पैलेस फोर्ट्स। बुक नाउ, कॉल ज्योत्सना एट 7329972409।
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzylin, New Jersey. Conditions apply.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशि जोन पार्ट टू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज स्पॉटलाइट तुम्हारे नाम रहेगी। लोग अप्रिशिएट करेंगे, क्लैप भी करेंगे, बस ओवर कॉन्फिडेंस को बैक स्टेज ही रहने देना। लकी कलर फॉर यू इज कोरल, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, चेंज चाहिए बिल्कुल करो, बस इम्पल्स पे लाइफ का सॉफ्टवेयर अपडेट मत कर देना। थिंक फर्स्ट एक्ट नेक्स्ट। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज डिटर्मिनेशन फुल पावर पे है। अगर सब लोग नो बोल रहे हैं और तुमने होमवर्क किया है तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, लेकिन ईगो को नेविगेटर मत बनाना। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, अगर नंबर्स या फैक्ट्स मैच नहीं कर रहे हैं देन स्पीक अप रिस्पेक्टफुली। अपनी बात रखना ही लीडरशिप की पहली क्वालिटी है। लकी कलर फॉर यू इज ग्रे, लकी नंबर इज 8। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हो सकता है आज तुम्हारी ओपिनियन सबसे अलग हो, कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले सिचुएशन को एक बार और देख लेना। न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू पॉसिबिलिटीज। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 5। पाइसीज यानी कि मीन राशि, आज अगर एनर्जी लो है तो गिल्ट मत फील करो, थोड़ा सा रिचार्ज भी प्रोडक्टिविटी का ही पार्ट है। नेटफ्लिक्स नहीं, नैप भी सेल्फ केयर होता है। लकी कलर फॉर यू इज सी ब्लू, लकी नंबर इज 4। एंड दैट्स इट फॉर योर राशि जोन पार्ट टू। मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ आज सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स एंड कनेक्ट विथ मी। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अरे यार, जस्ट लाइक दैट आज का मिर्ची मॉर्निंग्स भी ना फिनिश लाइन तक पहुंच गया है। होप तुम्हारी चाय थोड़ी सी गर्म हुई होगी, कम्यूट थोड़ा सा इजी रहा होगा और मूड थोड़ा सा मिर्चीदार बना रहा होगा। जाने से पहले मैं बोले तो प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स तुम्हें एक स्माइल वर्दी अपडेट देकर जाती हूँ। एक्टर बॉबी रियोल एके लॉर्ड बॉबी ने एक मस्त कोइंसिडेंस शेयर किया है। उन्होंने मजाक में कहा कि जब भी उन्होंने शुभमन गिल के साथ हाथ मिलाया है उसके बाद गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी मार दी है। दो बार ऐसा हो चुका है। तो बॉबी सर बोले, लगता है मैं ही लकी चार्म हूँ। अब असली लकी चार्म हैंडशेक था या फिर शुभमन की सॉलिड बैटिंग फॉर्म, ये तो क्रिकेट फैंस ही डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर इतना आसान होता तो स्टेडियम के बाहर लाइन नहीं लगी होती कि बॉबी सर एक हैंडशेक इधर भी। इसी नोट पर मैं तुम्हारे साथ हैंडशेक कर यहां से टाटा बाय बाय बोल रही हूँ। साथ में तुम्हें एक वर्चुअल हाई फाइव भी भेज रही हूँ। मे योर मीटिंग्स बी शॉर्ट, योर कॉफी बी स्ट्रॉन्ग एंड योर ट्रैफिक लाइट्स Surprisingly green. और अगर तुम घर पर बैठ के मुझे enjoy करो तो आज का दिन तुम्हारा awesomest जाए। और इसी बात पर टाटा बाय बाय आएगा। अभी के लिए तुम मुझे फॉलो कर लो अगर मुझे मिस करोगे या फिर शो के बारे में तुम्हें कुछ बात करनी है। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दिया ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
2: सारा जमाना सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की याद का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। एक्चुअली जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था, तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओह नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा, पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155. प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
8: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
9: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं. ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है. लेकिन बताए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी. एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी. इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई. हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी. मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे. एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है. मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम. एंड यू नो व्हाट, एक बड़े इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम. किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम. लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था. एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है. एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम. और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म. फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए. फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम. आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार. दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए. प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए. जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
4: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
5: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। You tune in with me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.
2: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
4: ज्यादातर फिल्में फ्राइडे को फेल नहीं होती, मंडे को होती हैं। फ्राइडे तो मार्केटिंग का दिन होता है, देन कम सैटरडे जो होता है क्यूरियोसिटी का दिन, लेकिन मंडे सच बोलता है। तब पता चलता है ऑडियंस से टिकट्स खरीदने आई थी या दिल देकर गई थी। पर आज के जमाने में जहाँ हर फ्राइडे कोई ना कोई फिल्म, कोई ना कोई गाना और कोई ना कोई नेक्स्ट बिग थिंग लॉन्च होता है, वहाँ मंडे से बड़ा क्रिटिक कोई नहीं होता। इसलिए अब सिर्फ ओपनिंग कलेक्शन से कहानियां नहीं लिखी जाती, वर्ड ऑफ माउथ लिखता है, रिपीट ऑडियंस लिखती है, और कभी कभी एक गाना या एक फिल्म अपनी असली जानी शुरू ही तब करती है जब उसका प्रमोशन खत्म हो जाता है। इस हफ्ते का मिर्ची टॉप 20 भी ऐसी ही कुछ कहानियों से भरा हुआ है। हाय, माय नेम इज सुरेंद्र सुंदरम एंड लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। और नंबर 20 इस हफ्ते भूत बंगला का ये गाना तू ही दिसता।
5: नंबर 20।

बाय द वे, अरिजीत सिंह का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी एक ऐसा गाना जिसकी कहानी ने साबित किया कि जब ऑडियंस किसी फिल्म को अपना लेती है ना, तो उसे कोई मार्केटिंग कैंपेन हरा नहीं सकता। नंबर 19 पर दिस इज मस्कारा बाय एआर रहमान एंड इशाक कामिल। फिल्म का नाम तो आप जानते हैं, मैं वापस आऊंगा। नंबर 19।

वैसे धुरंधर अगले साल नेशनल अवार्ड्स में कितनी बड़ी प्रेजेंस होने वाली है उसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। लेकिन इस हफ्ते नेशनल अवार्ड्स ने एक और फिल्म को गले लगा लिया, आर्टिकल 370, बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस, यामी गौतम। और पता है मुझे इस जीत में सबसे खूबसूरत बात क्या लगी? बॉलीवुड यामी गौतम को हीरोइन बनाना चाहता था, यामी गौतम ने एक्टर बनना पसंद किया। जब सब ग्लैमरस फिल्म्स के पीछे भाग रहे थे, यामी ने कहानियां चुनी, अ थर्सडे, लॉस्ट, चोर निकल के भागा, द ब्रिलियंट हक एंड आर्टिकल 370, एक के बाद एक स्टेलर परफॉर्मेंस। एंड नन ऑफ द फिल्म्स हैड अ जौहर, अ चोपड़ा, अ भंसाली और इम्तियाज अली अटैच टू इट। और आज नेशनल अवार्ड ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं दी, एक करियर को सर्टिफाई कर दिया। स्क्रीन पर सरनेम नहीं दिखता, सिर्फ परफॉर्मेंस दिखती है। नाउ यामी का करियर आसान रास्तों से नहीं गुजरा, शी हैड टू डू व्हाट एवरीवन डज। लेकिन उनकी पहली फिल्म थी विद अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, सुजीत सरकार। फिल्म का नाम विक्की डोनर। लोग इस फिल्म को आयुष्मान खुराना के लिए जानते हैं, बट इस फिल्म की असली स्थिरता यामी थी। इस फिल्म का वो गाना इसने हमें पहली बार बताया था कि एक नई एक्ट्रेस आ चुकी है। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम विक्की डोनर। दिस इज पानी दा रंग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
7: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 7323578200. जय गुरुदेव.
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
10: नंबर 10.

जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई उसी दिन एक और फिल्म ने आना था, पर वो फैसला बदल दिया गया। कभी कभी एक फिल्म का इंतजार नहीं होता, एक इंसान का इंतजार होता है, और पैन इंडिया सुपरस्टार यश उन्हीं स्टार्स में से एक है। KGF के बाद 4 साल हो गए स्क्रीन पर उन्हें देखे हुए। बीच में टॉक्सिक की रिलीज डेट

0: कितनी बार बदले, कभी शूटिंग का रीजन, कभी प्रोडक्शन का रीजन, कभी दुनिया की सिचुएशन का रीजन, लेकिन ऑनेस्टली ऑडियंस को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए बस एक बात मैटर करती है, दैट यश इज कमिंग बैक। और सिर्फ एक फिल्म में नहीं, दो फिल्मों में। ऑफ कोर्स रामायण में वो रावण का रोल कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मिलेगी टॉक्सिक। और जब इसका टीजर आया था, सबके दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर टॉक्सिक है क्या, व्हाट इज इट अबाउट? तो चलो इसका जवाब खुद यश से सुन लेते हैं।
1: इन इंडिया वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, बट स्टेट ऑफ इंडिया वाज स्टिल अंडर पोर्चुगीज कंट्रोल टिल 1961. So the story is set in that era where it was time where a lot of Portuguese were, Indians were there. So in between that, there was trade, a lot of port, business. So in that era, if there is struggle for power, greed, and then gangster, you know, all the gangster things can happen with lots of Tommy guns and action. With that, there's a lot of complex human emotions where there's a deep love story in it, there's a brother-sister sentiment, and also it's a father and son revenge saga. So it's a very interesting package.
0: तो सेटिंग पुराने दौर की है, इसमें गैंगस्टर्स हैं, एक पावर स्ट्रगल है, प्यार भी है और साथ में रिवेंज भी, यानी एक प्रॉपर लार्जर देन लाइफ सिनेमैटिक मसाला यूनिवर्स। लेकिन टीजर के बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया था वो है इस फिल्म का म्यूजिक, क्योंकि विशाल मिश्रा और राजशेखर की जोड़ी जब भी साथ आई है खाली हाथ नहीं गई। एनिमल में पहले भी मैं, एंड देन सयारा में तुम हो तो, और अब टॉक्सिक में तबाही। नाम भी वही, एनर्जी भी वही, और यश के स्क्रीन प्रेजेंस के साथ गाना बिल्कुल उसी स्केल पर सोचता है। बस एक वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसका वीडियो देखने वाले हो तो बच्चों को थोड़ा दूर ही रखिएगा, इट्स नॉट सेफ फॉर देयर व्यूइंग। मिर्ची टॉप 20 पर डेब्यूइंग इन द टॉप 10, और नंबर 9 यह टॉक्सिक का तबाही।
2: नंबर 9।

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
4: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
5: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
4: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
6: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
8: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
13: नंबर 8.

0: धमाल इज अ सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग इसे एंजॉय भी करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन वेरी रिसेंटली मुझे एक अजीब सी रियलाइजेशन हुई। बचपन में मुझे कभी समझ ही नहीं आता था कि मम्मी पापा हर बार वही पुराने गाने आखिर क्यों सुनते थे। इतने नए गाने आ रहे थे फिर भी उन्हें सुनना था, मोहम्मद रफी को, किशोर कुमार को, लता जी को, आशा जी को, और तब लगता था शायद वो नए म्यूजिक को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। लेकिन आज समझ आया, कुछ गाने पुराने नहीं होते, हम उनकी उम्र के हो जाते हैं। YouTube पर वीडियो सर्व करते करते अचानक एक वीडियो पे आके मैं रुक गया। किसी शादी में एक वायलिनिस्ट मोहब्बते की धुन बजा रही थी और जैसे ही ये थीम बजी, मैं फिल्म को याद नहीं कर रहा था, मैं अपनी जिंदगी याद कर रहा था। यस, आज देखते हैं तो मोहब्बतें एक बड़ी फ्लॉट सी फिल्म लगती है। प्रीमाइस ओवर द टॉप लगता है, कुछ सीन्स जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक लगते हैं, लेकिन फिर देयर इज शाहरुख खान, हाथ में वायलिन, कंधे पर स्वेटर और ये ट्यून, और बस सारी क्रिटिसिज्म चुप हो जाती है। यही तो कमाल है कुछ कॉम्पोजिशंस का, वो आपको फिल्म याद नहीं दिलाती, वो आपको आप याद दिला देती है। इस ट्यून का कमाल देखिए, लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी जब ये ट्यून बजती है, we just are transported to that time. The शाहरुख खान ईरा, अमिताभ बच्चन एज नारायण शंकर, वो तीन लव स्टोरीज और गुरुकुल की ये कहानी, यू जस्ट नो। लेकिन जिस ईरा में अब हम हैं और जिनके गाने हम सुन रहे हैं, अगर आंख बंद करो तो याद नहीं आता कि फिल्म में क्या हुआ था। टेक द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन फॉर एग्जाम्पल, चुनरी चुनरी, आपको हमेशा सलमान खान और सुष्मिता सेन ही याद आएंगे, नया वर्जन उतना याद नहीं आएगा। और अगर एक और धुन है जो हर बार वक्त को थोड़ी देर के लिए रोक देती है, तो वो है ये कॉम्पोजिशन, हिंदी फिल्म्स के इतिहास के सबसे लेजेंडरी गानों में से एक, एन अनपैरेलल्ड परफेक्ट कॉम्पोजिशन बाय शंकर एहसान लॉय, लिखा है इस देश के सबसे ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक जावेद साहब ने, and it has been sung by the flawless, the perfect Sonu Nigam. Mera rewind track of the week.
1: Top 20 rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इट्स 12:30 पीएम मिर्ची टाइम चेक आरके जूल्स गेट अमेजिंग डील्स ऑन एक्सक्विजिट कलेक्शन ऑन वाइड रेंज ऑफ फ्लॉलेस एंड स्टनिंग ज्वेलरी कलेक्शन आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 2

एक गाना जब बहुत बड़ा हिट बन जाता है, हम उसे एक्टर के नाम से याद रखते हैं, कभी सिंगर के, कभी फिल्म के, लेकिन उस गाने के पीछे कितने लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं उसकी बात बहुत कम होती है। पिछले कुछ दिनों से सैयारा फिर से डिस्कशन में है, बिकॉज द सॉन्ग इज आउट ऑफ द काउंटडाउन आफ्टर ऑलमोस्ट 60 वीक्स। लेकिन इस बार वो अपनी कामयाबी की वजह से डिस्कशन में नहीं है, रॉयल्टीज को लेकर हुई एक पब्लिक कॉन्वर्सेशन की वजह से। एक तरफ है कंपोजर तनिष्क बागची, जिनका कहना है कि उन्हें टाइटल ट्रैक के रॉयल्टीज नहीं मिले। दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने क्लैरिफाई किया है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सारी पेमेंट्स और रॉयल्टी ऑब्लिगेशंस पूरी की जा चुकी है। देखो सच क्या है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा मिलेगा, हमें नहीं पता। एंड तनिष्क बागची ने वो पोस्ट जो है वो डिलीट भी कर दिया है। लेकिन

0: एक बात मैं जरूर जानता हूँ, जब कोई गाना इतना बड़ा बन जाता है ना जैसे सैयारा बना, तो वो सिर्फ एक सिंगर का नहीं रहता, ना सिर्फ कंपोजर का रहता है, ना वो फिल्म का रहता है, वो हम सबका हो जाता है। बस उम्मीद इतनी सी होती है कि जिस गाने को इतना प्यार मिला उसे बनाने वालों को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले। और वैसे हर जनरेशन का एक साउंड ट्रैक जरूर होता है, पिछले साल वो साउंड ट्रैक था सैयारा, लेकिन एक रोमांटिक गाना और भी था विच फॉर मी वॉज एट पार विद सैयारा, जिसमें अरिजीत का फिर एक मास्टर क्लास सुनाई देता है, कंपोज बाय द सेंसेशन नोन एज शाश्वत सचदेव, वंस अगेन ऑन नंबर वन, दिस इज गहरा हुआ
1: नंबर वन।

0: इस गाने की गहराई में मैं कितने महीनों से डूबा हुआ हूँ एंड फिर भी आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट बट आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस बिकॉज मेरा टाइम अप हो चुका है बट रिमेम्बर आप और मैं यहाँ इसलिए मिलते हैं बिकॉज वी लव आवर मूवीज सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन अनदर एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉक 20 दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट
1: Suren ke saath only on Mirchi. It's hot.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है
5: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग ईकेजी एंड फ्लेबोटमी मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स
4: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088220002 और विजिट aimseducation.edu.
6: Thank you.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

अब बहनों भाइयों, 1968 का ये सुपरहिट गीत हमने सुना फिल्म शिखर से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अंग्रेज बच्चों, 68 मतलब 68। इस गाने के लिए आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। लेकिन किंतु परंतु बट, ये गाना पहले लता जी को ऑफर हुआ था लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके हिसाब से लिरिक्स थोड़े से डेरोगेटरी थे, यू नो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स, शंकर जयकिशन का ये कॉम्पोजिशन था। और उस साल गीत माला पर ये गीत पायदा नंबर 9 पर था। बड़ी हैरानी है मुझे, इसे नंबर 1 पे होना चाहिए था। लेकिन नंबर 1 पे जो गाना था वो हम सुनेंगे राइट है शागिर्द फिल्म का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा.
6: चढ़दे पंजाब बार्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टपा है?
5: अते एक वार इश्क हो जावे तां आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने.
7: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने.
5: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा.
8: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी.
5: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नूं. फिल्म इश्कनामा.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Listener mein back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only on.

आप आए बाहर आई मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। ये मैं आपको भी बोल रही हूँ और जिस फिल्म का गाना हमने सुना उसका नाम भी बता रही हूँ। तो गाने में राजेंद्र कुमार जी, साधना जी उदास उदास होके ये गाना गा रहे हैं। राजेंद्र कुमार जी वेल ड्रेस्ड हैं लेकिन एज यूजुअल क्लीन शेवन नहीं है, हल्की हल्की स्टबल है उनपे। साधना जी सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए रो रही है लेकिन उनका काजल लाइन और एकदम परफेक्ट है। हिमाचल की वादियों में ये गाना शूट हुआ था और हिमाचल से हम चलते हैं वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग जहाँ पे अगला गाना शूट हुआ था, जहाँ शर्मिला जी ट्रेन में बैठी हैं, मस्त सा जूड़ा बना के उस पे फूल भी लगा है, किताब पढ़ रही हैं और साथ में जीप में राजेश खन्ना जी पहाड़ी टोपी पहनकर उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं गाना गाते हुए। आराधना फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

कुछ चीजों की किस्मत में टूटना ही लिखा होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जैसे उम्मीदें, सपने, वादे, खिलौने, चूड़ियाँ। चूड़ियों पर जरा एक शेर सुनिए, तनवीर गाजी साहब का है। मेरी एक शर्ट में कल उसने बटन टांका था, शहर के शोर में चूड़ी की खनक आज भी है। एक ये शारिक कैफी साहब का सुनिए, कांच की चूड़ी लेकर मैं जब तक लौटा उसके हाथों में सोने का कंगन था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जिसमें बड़े प्यार से चूड़ियाँ गिफ्ट की जा रही हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu @rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची 107.8।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची.
6: मुझे कुछ कहना है,
7: मुझे भी कुछ कहना है,
6: मुझे कुछ कहना.

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: एक बार एक इंटरव्यू में राज कपूर साहब से मेरा नाम जोकर फिल्म के फेलियर के बारे में और उनकी फेवरेट फिल्म के बारे में पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया था।
1: पंजाबी स्कंदन की माँ जीवेंदी सात कर्म न देंदी वंड, तो सात जनती तो है वो, सभी उसी को प्यारे हैं, वो कर्म नहीं बांट के देती, उनके अपने अपने कर्म होते हैं, अपना अपना योग होता है। तो मेरे लिए ये कहना पूछना आपका कि मुझे कौन सी पिक्चर अजीज है कौन सी नहीं, सभी तो मेरी हैं। हाँ, उनके अपने अपने कुछ करिश्मे थे जो कुछ बहुत ही चली हैं और कुछ नहीं चली। जिंदगी में भी ये होता है और शायद फिल्मों के बारे में भी ये होता है कि चंद तस्वीरें जो चलती नहीं है ना, तो वो कुछ रह जाती है पीछे, तो जो निकल जाता है आगे वो तो खैर खुद ब खुद बहुत ही अहमियत पा लेता है, बहुत से सहारे और प्रशंसाएं और ये सब कुछ उसके लिए होते हैं। जो नहीं चलता आगे वो आपके करीब आ जाता है, तो उसमें से एक तस्वीर है मेरा नाम जोकर।
0: वाह साहब क्या बात है, इसी बात पे मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गाना सुनेंगे। शंकर जयकिशन जी का कंपोज किया हुआ, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, मुकेश जी की आवाज में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और अब जो हम गाना सुनने वाले हैं वो एक विजुअल डिलाइट है, एन इवनिंग इन पेरिस का ये गाना जो पेरिस में शूट हुआ है। इसमें शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर जी हैं। शम्मी कपूर जी शर्मिला टैगोर को फॉलो कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं वो अपने एटीट्यूड में है। और पेरिस में बहुत अच्छे से शूट किया गया है गाना, जहाँ पे कभी ये रोड पे हैं गाड़ी में, फिर शर्मिला जी वो जो टूरिस्ट बस होती है डबल डेकर उसमें चढ़ जाती हैं, फिर वो पानी वाला स्टीमर होता है उसमें वो चढ़ जाती हैं। तो अलग अलग तरह से शहर को दिखाया गया है। और मैं जब भी इस तरह का कोई पुराना गाना देखती हूँ ना जिसमें दुनिया के किसी शहर को कैप्चर किया गया होता है, तो मुझे खुशी तो बहुत होती है और थोड़ा थोड़ा ऐसे गम भी होता है कि मैं जब भी पेरिस शहर को देखूंगी वो मुझे इस रूप में तो देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उसके नए रूप में शायद कुछ और नई बातें होंगी, लेकिन मुझे तो पुरानी बातें देखनी है ना जो मुझे शायद इसी गाने में या किसी और जगह जब पेरिस को उस टाइम पे शूट किया गया होगा किसी वीडियो में, वहां देखने को मिलेगी। खैर, अभी यहाँ पर ये गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो.
4: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स एंड ओपन डांस फ्लोर एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर ऑल जस्ट फॉर $65. फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस फोर्ट्स. बुक नाउ. कॉल ज्योत्सना एट 732-997-2409.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
7: Inefficient,
8: very complex,
9: clumsy और
10: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.
0: Purani Jeans with Charu, only on

1970 की बहुत सारी फिल्में एक बहुत ही खास वजह से चली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और वो वजह थी राजेश खन्ना साहब की फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर। भाई 1969 में आराधना फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब तो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे, सनसनी मच गई थी उनकी। तो उनकी पॉपुलैरिटी को एनकैश करने के लिए दूसरी कई फिल्मों में उनकी फिल्म आन मिलो सजना का ट्रेलर चलाया गया था, तो काफी पब्लिक दूसरी फिल्में देखने गई थी ये ट्रेलर देखने के लिए। और आन मिलो सजना उन 17 कंसेक्यूटिव हिट्स में से थी जो राजेश खन्ना साहब की उस टाइम फिल्में हिट हुई थी। इसी बात पे इस फिल्म का गाना सुन लेते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा.
4: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा. ते तू किस तरह टप आया?
3: अते एक बार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने.
5: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने.
3: इसे तरह दे जुनून भरे इश्क दी कहानी है इश्कनामा.
6: रांझे दित्ते 12 साल ते मैं दित्ती आ जिंदगी.
3: अरविंदर सिंह खैरा दी डायरेक्शन अते जय रंधावा अते शहनाज़ गिल दी जोड़ी दी कमाल दी केमिस्ट्री वेखो सिनेमा दे वड्डे पर्दे ते 24 जुलाई नू. फिल्म इश्कनामा.
7: No!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 years ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Listener mein back to back gana sunega.
12: Back to back gana sunega.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
13: It's 2:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
0: Purani jeans. With Charu. Only on

1978 की एक फिल्म है हीरा लाल पन्ना लाल। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत ही टाइम पास फालतू टाइप की फिल्म है, जो 70s की टिपिकल फिल्म नहीं होती थी फॉर्मूला वाली कि बचपन में बच्चों के माँ बाप को मार दिया जाता है, फिर वो किन हालातों में बड़े होते हैं, बड़े होके बदला बदला लेते हैं, वो सब। लेकिन एक खास बात यह है कि इस फिल्म के स्टार्टिंग में ना, जब क्रेडिट्स आते हैं, तब पुलिस फोर्स से माफी मांगी गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा बकायदा लिखा है उस अपॉलोजी में कि हमसे हमारी ओवर एंथुजियाज्म में ऐसा हो गया कि हमने पुलिस को गलत तरह से पोर्ट्रे कर दिया, जिसके लिए हम माफी मांगते हैं। हम किस तरह से पुलिस फोर्स को पोर्ट्रे किया गया है, इसके लिए तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वैसे कई बार मुझे लगता है कुछ पुरानी फिल्में अगर आज के टाइम में रिलीज होती ना, तो इतनी कॉन्ट्रोवर्सी में आती कि बैन हो जाती, ट्रोल हो जाती। खैर, अभी के लिए हीरा लाल पन्ना लाल में से लाल निकाल देते हैं। हीरा पन्ना फिल्म का गाना सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

एक बहुत पुराना 19वीं सदी का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक अमेरिकन सिविल वॉर सॉन्ग है, सिविल वॉर मतलब नॉट द मूवी, इट्स एन एक्चुअल वॉर सॉन्ग जो वॉर के बाद सोल्जर्स के घर आने की खुशी को दर्शाता है। ये एक अमेरिकन आयरिश म्यूजिशियन ने बनाया था गाना, जिसके बोल अंग्रेजी हैं, लेकिन ट्यून एक आयरिश फोक ट्यून है। थोड़ा सा सुनिए जरा।

अभी ऐसा सुनने में आता है कि इसी के म्यूजिक से इंस्पायर हुआ था वो गाना जो हम नेक्स्ट सुनने वाले हैं। अब वो हुआ था कि नहीं, वो आप डिसाइड कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 3 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Purani jeans. Charu ke saath. Sirf Mirchi par.
3: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनों, अरे मदगन भाई छगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

मुझे ना YouTube पे रैंडमली पुरानी फिल्में देखने का बड़ा ही शौक है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और कुछ दिन पहले मैंने जो फिल्म देखी वो है 1980 की स्वयंवर। एक सुपरहिट तेलुगु फिल्म गुंडम्मा कथा का रीमेक है। इसमें मेन लीड में संजीव कुमार, शशि कपूर, विद्या सिन्हा, मौसमी चैटर्जी हैं। बाकी नादिरा, डॉक्टर श्री राम लागू, शशिकला, असरानी, रंजीत, मदनपुरी, बहुत सारे लोग हैं। और सबसे अडोरेबल इसमें मुझे लगे संजीव कुमार जी, मुझे एनीवे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सीन कुछ यूं होता है कि वो खुद एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जिस बंदी से उनको शादी करनी है उसके घर में नौकर बन के रहते हैं। अच्छा, ये बंदी विद्या सिन्हा होती है और इसी बंदी की सिस्टर मौसमी चैटर्जी, ये थोड़ी नकचड़ी होती है। इनको सुधारने के लिए संजीव कुमार के जो भाई प्ले करते हैं शशि कपूर, वो इनके साथ कुछ ड्रामा करते हैं। फन एंटरटेनिंग फिल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो। अभी इसका गाना सुनेंगे जो फिल्म में शशि कपूर एंड मौसमी चैटर्जी पे पिक्चराइज्ड है। राजेश रोशन की कॉम्पोजिशन, गुलजार साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक.
6: मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
7: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
8: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
7: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: Purani Jeans with Charu. Only

1980 की शान फिल्म की ओरिजिनल स्टार कास्ट पता है क्या थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अमिताभ बच्चन, परवीन बाबी तो थे, लेकिन उनके साथ थे धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी। लेकिन इन दोनों को, धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी को, रमेश सिप्पी साहब जिनकी ये फिल्म थी उनसे कुछ इश्यूज हो गए और दोनों ने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह पे आए शशि कपूर एंड बिंदिया गोस्वामी। अच्छा, विनोद खन्ना साहब थे, लेकिन फिर उन्होंने सब मोह माया सांसारिक प्रेम छोड़कर स्पिरिचुअल गुरु की शरण में जाने का डिसीजन लिया और उनकी जगह पे आए शत्रुघ्न सिन्हा साहब। एंड ये बिलीव करने में ना मुझे कई बार ऐसे मुश्किल आती है कि शाकाल के रोल के लिए संजीव कुमार साहब को साइन किया गया था, लेकिन सैडली तब उन्हें उनका फर्स्ट हार्ट अटैक आया और उस वजह से उन्होंने फिल्म नहीं की। तब उनकी जगह पर कुलभूषण खरबंदा साहब आए और शाकाल बनकर सब जगह छाए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's 3:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
5: इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो.
6: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0. ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टिवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स एंड ओपन डांस फ्लो एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर ऑल जस्ट फॉर $65. फ्राइडे ऑगस्ट 7th 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट्स पैलेस फोर्ट्स. बुक नाउ. कॉल ज्योत्सना एट 7329972409.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Isse apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1 सिर्फ एक ही होता है.
10: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: Pirani Jeans with Charu, only on

शाहरुख खान का घर मन्नत। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये घर शाहरुख खान ने 90s में यस बॉस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिस्कवर किया और 2001 में इसे खरीदा। लेकिन उससे पहले ये घर काफी टाइम रेंट पे अवेलेबल होता था फिल्मों की शूटिंग के लिए। ऐसा सुनने में आता है कि ये घर लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी में बना था। विला वियना इसका नाम था। पहले इसके पारसी ओनर्स थे, उसके बाद काफी ओनर्स रहे और इनमें से कुछ ओनर्स ने इसे रेंट पे दिया फिल्मों की शूटिंग के लिए। एंड वन ऑफ सच फिल्म्स वाज तेजाब। तेजाब फिल्म में जो माधुरी दीक्षित का घर दिखाया गया है वो यही तो घर है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार, और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
7: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

दोस्तों मंडे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना काम तो बिल्कुल भी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। क्योंकि यार मंडे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि दिमाग अभी भी वीकेंड टाइम जोन में होता है। बॉडी ऑलरेडी ऑफिस तो पहुंच जाती है, लैपटॉप ऑन हो जाता है, लेकिन दिमाग अभी भी सैटरडे के किसी लंच टेबल पर बैठा होता है। कोई अभी भी वीकेंड की फोटोज देख रहा होता है, कोई लेफ्ट ओवर्स फिनिश कर रहा होता है, और कोई सीक्रेटली कैलकुलेट कर रहा होता है कि नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड कितना दूर है। लेकिन मंडे शाम आते आते ना रियलिटी ऑफिशियली एक्सेप्ट हो ही जाती है कि चलो ठीक है, वीक शुरू हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात तो ज़रूर है कि मंडे इवनिंग आते आते प्रेशर कम हो ही जाता है, सुबह वाली वो रश निकल जाती है, मीटिंग्स ख़त्म हो जाती है, और अब थोड़ा सा अपना टाइम मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों मंडे को भी इतना सीरियसली नहीं लेते, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा मस्ती और थोड़ी शाम शानदार हो जाए। और आप भी बताइए कि आप ऐसे मंडे को कैसे सर्वाइव करते हो, आपका सीक्रेट वेपन क्या है, कॉफी, चाय, म्यूजिक या प्योर विल पावर। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस शाम को शानदार बनाने के लिए मेरा जो सीक्रेट वेपन है वो है आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La virpa, la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hut.
4: Hello,
5: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
4: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
5: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
4: हाँ जी.
5: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
4: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
5: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
4: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर ट्यून उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करे.
5: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
4: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
5: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम.
4: आपका इस टाइप पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
5: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करने जा रही
4: हैं. मत सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार
5: हो आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचती हुई लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे क्वालिटी ट्यून लगती है. आप बहस करने जा रही है मेरे से?
4: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
5: आपको क्वालिटी ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी क्वालिटी ट्यून लगाएंगी.
4: हाँ बताइए
5: आप क्वालिटी ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
4: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
5: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
4: यार आप लोग किसी दिन ना मतलब
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन.
11: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. Comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
12: इश्क कदे धर्म जात जां सरहदां वेख के नहीं हुंदा.
13: चढ़दे पंजाब बॉर्डर कबूतर नहीं टप सकदा, ते तू किस तरह टप आ.
12: अते एक वार इश्क हो जावे ता आशिक माशूक लई हर हद टप सकदे ने.
14: बागी ते आशिक हदां सरहदां टप ही आउंदे ने.
12: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨੂਨ ਭਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ.
15: ਰਾਂਝੇ ਦਿੱਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ.
12: ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੇਖੋ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ. ਫਿਲਮ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ.
16: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
17: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
10: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
9: Shaadi shopping ka

कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका यूएसए फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पे अगला गाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 4:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Sharda. Let's do not donkey, have a funky time.
2: पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेक डाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं, और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्सेशंस भी क्रिएट करता है। वैसे आप ही बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzilin।

हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो। उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और दिन लंबे होते हैं, शामें धीरे धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा इंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीजन हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना right here on Mirchi. It's hot.

0: Mirci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Advocate Atul se baat kara dijiye sir.
1: Bol raha mat kaun?
2: Atul ji. असल में मेरे को माफ करना, आपको डायरेक्टली फोन कर रहा हूँ, मैं परेशान बहुत हूँ। समीर बोल रहा हूँ एडवोकेट जी।
1: कितने नंबर दिया आपको मेरा?
2: नंबर के लिए क्षमा चाहता हूँ सर, आपके पैर पकड़ता हूँ। मैंने आपका नंबर एक जान पहचान वाले से निकलवाया था।
1: ठीक है, काम है?
2: वकील साहब, मेरी बीवी मेरे को धोखे दे रही है।
1: अच्छा,
2: मेरी बीवी मेरी शादी को 7 साल हो गए, मेरे को 7 साल से कंटिन्यूस धोखे दे रही है।
1: मेरे चैम्बर में आइए, तो हम जरा बैठ के बात कर सकते हैं आपसे।
2: मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ वकील साहब, मेरी जान को बचाओ, मेरे को पिछले हफ्ते भी धोखे देती है, हमेशा
1: धोखे। किस टाइप का धोखे देती है?
2: मैं वही बता रहा हूँ, देखिए, चाहे मेरी पैंट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे बनियान हो, चाहे मेरा अंडरवियर तक हो, वही धोखे देती है। था क्या धोखे, इतना धोखे देती है यार, वो तो गंदा भी नहीं था अंडरवियर, उसको भी धोखे दे दिया उसने।
1: किसने नंबर दिया आपको ये फालतू मजाक करने?
2: दोस्त,
1: ये फालतू मजाक क्या कर रहे हैं?
2: मजाक की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं है, बेवकूफ
1: बात है। बेवकूफ नहीं
3: सर, बेवकूफ नहीं, उसको मुर्गा कहते हैं। अतुल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, अपने नंबर दिया था, उन्होंने कहा था कि आपका मुर्गा बना दें, आपका मुर्गा बना दिया आप रेडियो मिर्ची में।
2: आप भी धोखे, ये देखो धोखे दे दिया।
3: बुरा ना माने, होली है, मेरे साथ जरा प्यार से बोल दीजिए
1: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: की टाइम। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी क्राइसिस की बात होती है ना, तो यार हर क्राइसिस सिर्फ चैलेंजेस लेकर नहीं आती, कभी कभी वो अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आती है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग हेडलाइंस देखते हैं और कुछ लोग पॉसिबिलिटीज। और जब चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन और मार्केट अनसर्टेनिटी की बातें होती है ना, तो बहुत से लोग अक्सर एक सवाल पे अटक जाते हैं कि यार इसमें घर खरीदने का बेस्ट टाइम क्या होता है, क्या परफेक्ट मार्केट का वेट करना चाहिए या अपॉर्चुनिटी को पहचानना चाहिए जब वो सामने हो। और इसी पर थोड़ी क्लैरिटी और एक्सपर्ट इंसाइट देने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो अनसर्टेनिटी के बीच अपॉर्चुनिटी को कैसे पहचाने और होम बाइंग के लिए क्या ये राइट टाइम है, कैसे इवैल्यूएट करें, पूछते हैं बीश से। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ वंडरफुल वीकेंड। द वेदर वाज गॉर्जियस एंड दे से इट्स गोना रेन फॉर द नेक्स्ट 3 डेज एंड टुडे द यूएस मार्केट्स आर अप। फ्रेंड्स, if you have been hunting lately, house hunting, you know the market feels like a bit moving target with 30-year fixed rate hovering in at 6.5% range. Many buyers are asking the same question: should I buy now or wait for the rates to fall? Here's the reality: waiting for lower rates can sometimes backfire. While mortgage rates are higher than they were a few years ago, housing inventory is steadily recovering, giving buyers more room to negotiate with sellers. If rates drop down the road, sidelined buyers will jump back in, driving competition and prices right back up. Remember the old real estate saying, marry the house, date the rate. You can always refinance it later if rates drop. So what's the smart move if you are looking to buy today? First, get pre-approved early. A solid pre-approval letter shows sellers you mean business and helps you lock in your budget. Second, explore creative loan options. Don't wait, just look at 30-year fixed mortgage. Finally, factor in total housing cost. Remember that taxes, homeowners insurance, and HOA fees affect your money.

0: Saturdays, 5:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही। लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना तो हम ट्विस्ट सुनते थे, क्योंकि यार नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज़ ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था। और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मजे की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो। वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मजे की बात तो ये है कि इम्तियाज अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो खत्म होके भी मूवी में खत्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। वैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टेड आरजी मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की, जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था। कंपोज्ड बाय प्रीतम, 2009 का लव आजकल का एल्बम। और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। आर फेवरेट आहू आहू, क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है। फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं, क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था और ना सिर्फ उस वक्त, अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Day. The person you are trying to urgently call is snoring and sleeping inside the hall.
3: Hello,
4: ये हंसा से मेरी बात कराओ भाई.
3: Hello, क्या बोल रही हूँ मैं?
4: श्रीनिवासपुरी से हेड कांस्टेबल दरवील सिंह बोल रहा हूँ.
3: हाँ जी.
4: आपके मोबाइल पे कल 3-4 मिस्ड कॉल आई थी.
3: आई तो थी, किसी की पता नहीं किसकी थी.
4: ना आपको पता ही तो नहीं चलेगा किसकी थी. आपको मालूम है आपने क्या किया है? आपने डायलर टोन ये क्या लगा रखी है? जे जे जे. 3 लोगों ने आपको कॉल किया है डायलर टोन सुन के. एक आदमी सीरियस है, एम्स में भर्ती है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको यही डायलर टोन मिली थी, जे जे जे जे जे. ये दिल के मरीज के लिए कितनी खतरनाक है आपको ये पता है? 3 दिल के पेशेंट ने आपको फोन किया है और उनकी हालत खराब है. बेवकूफी की बात कर रही है.
3: मैंने अगर लगा रखा है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी अगर कॉलर टोन उसको नहीं पसंद है तो मुझे फोन नहीं करेगा.
4: तो किसी को कैसे पता चलेगा कॉलर ट्यून कैसी है? नहीं है, मैं, मेरे को पता था. मैंने आपको कॉल किया, मेरा दिल हिल गया यार.
3: नहीं तो कौन सी लगाऊं मैं?
4: कितनी डायलर टोन है? तुम आए तो गली में आज चांद निकलता, या फिर ये लगा लीजिए, तुझे देखा तो ये जाना सनम. आपका
3: पता भी नहीं मेरे को किसने लगाई.
4: दफा 300 ट्रिंग ट्रिंग के तहत ये बहुत बड़ा गुनाह है. मैं आपको ये बता रहा हूँ, दिल्ली में इस तरह की कॉलर ट्यून नहीं लगाएंगे आप, समझिए आप. आप क्या कर सकते हैं? आप मुझसे बहस करे जा रही
3: है. सुनिए मत, सुने. और अगर कोई बीमार है मेरे कारण से, थोड़ा ना बीमार हो
4: आपके कारण से. हंसा, मैं आपसे आखिरी बार तमीज से बात कर रहा हूँ. एक लेडी कांस्टेबल आएगी और आपको खींचते हुए लेके आएगी यहाँ श्रीनिवासपुरी थाने में. फिर आपको बताएंगे कि कैसे कॉलर ट्यून लगती है. आप बहस करे जा रही है मेरे से.
3: अच्छा ठीक है सर, आप जो बोलेंगे.
4: आपको कॉलर ट्यून लगानी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कौन सी कॉलर ट्यून लगाएंगी.
3: हाँ बताइए
4: आप कॉलर ट्यून लगाइए कुकड़ू को.
3: ठीक है सर, उसका मेरे को आप दे दीजिएगा. मुझे नहीं पता कहाँ से मिलेगी वो.
4: ये रेडियो मिर्ची से मिलेगी हमसा. और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुम्हारा मुर्गा बनाया है, मुझे राजीव ने तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारी कॉलर ट्यून वाकई में खतरनाक है. जे जे जे.
3: यार आप लोग किसी दिन ना, मतलब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep Cow, the Jano.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: Tera kya hoga, Kalya?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab mirchi kha.
16: Radio Mirchi. It's hot.
17: Sham Sardar, let's do not donkey, have a funky time.
18: कुछ करियर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ जॉब नहीं होते, लाइफस्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी भी देते हैं. श्याम

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन दी बात होर सी।
1: अरे 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Izzlin.
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
9: इस फ्रेंडशिप डे प्लान सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखो।
10: गेट रेडी फॉर दोस्ती स्पेशल जैमिंग नाइट 1.0। ज्योत्सना शर्मा एंड तरुण शर्मा ऑफ कल्टीवेट टैलेंट्स ब्रिंग यू एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद लाइव बैंड एंड सिंगर्स, एन ओपन डांस फ्लो एंड अ प्रीमियम 3-course डिनर, ऑल जस्ट फॉर $65। फ्राइडे ऑगस्ट 7th, 7 PM एट रॉयल अल्बर्ट पैलेस फोर्ट्स। बुक नाउ, कॉल ज्योत्सना एट 732-997-2409।
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
12: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzlin, New Jersey. Conditions apply.

0: at 6:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Sham Shandar, let's do not
1: donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कम्पोज बाई प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जब इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मजे की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्सेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center Piscataway. Aapne ane aapna parivar ne Guru Purnima ane Rudrabhishek Mahotsav ma sneh bharyu aamantran aape che. Shanivar 1 August e savare 10 vage Shirji Rudrabhishek ane sanje 5 vage Virat Deep Yagna. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्याजी नी पावन उपस्थिति 732-357-8200 जय गुरुदेव।
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, ए आर रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज़ से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें यार पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज़ का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल मेलोडीज है जो आपको बहुत पसंद है। चल मी और इंस्टाइट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था। और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है, ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabbala. Burga, burga. La virva la burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हाँ जी कौन?
3: हेलो, किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है
3: भैया? किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है
3: भैया? नंबर चेक करके
2: दोबारा मिला
3: पागल।
2: पता
3: नहीं कौन बोल रहा
2: है। पता नहीं कौन बोल रहा था।
4: इको आ रहा है। इको।
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो जैन साहब, भैया आपको मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ।
3: भैया
2: नंबर चेक के मिला।
3: हेलो
2: हेलो
3: भैया, क्यों परेशान कर रहा?
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा। नंबर आ गया मेरे पास।
3: पागल
2: कहीं का?
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
3: रवि है।
4: रवि, रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी।
3: कुकड़ू
4: को भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई।
4: आप खत्म कर दो यार।
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
9: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
7: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
11: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
14: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
13: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
15: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
14: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
15: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
16: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
17: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot. It's

संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफी ऐसे डुओज दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओ हो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडी इज फ्रॉम मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हाँ, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होता ना आंखों आंखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है? टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy or
5: confusion ही confusion.
2: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: Oh, no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
10: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.

0: at 7:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी यहाँ पे बातें हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस जबरदस्त डुओ ने, विच इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओस के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: प्यारी ब्राइड, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगा, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानी।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
0: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: शाम शानदार, let's go nautanki, have a funky time।
2: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।